और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत क्योंकि शैतान का दांव कमजोर होता है।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ए ज़रख़ेज़ी असा जे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ऐं सरखेज़ी असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सदर आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की मुकर्री है तो उसकी मंजूरी दे छी सिंध हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की मुकर्री की मंजूरी दिनी वही सिंध हाई कोर्ट ए लाहौर हाई कोर्ट में कुछ जजेस की तोसीक की पिण मंजूरी दई वही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो पगारू अलाउंसेज ए पेंशन भी वफाकी आईनी अदालत के जजेस के बराबर करण की मंजूरी दिनी वही। हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट पेंशन ए बेन सहूलत बाबत 1997 के हुक्मनामे में पिण तरमीम की मंजूरी दिनी वही। सदर पारा हारून अख्तर के वजी आजम जो सनत ए पैदावार बाबत खसूसी सलाहकार मुकर्र करण की भी मंजूरी दिनी वही है।

अमेरिकी सदर ट्रंप जो जंग में नुकसान जो हरजाणो ईरान का वसूल करण जो ऐलान सदस्य आए तो अपना हर मुद्दे अमेरिका जो 100% कंट्रोल है। बारूदी सुरंगू साफ क्यों व्यू आन ईरान खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकूं था, ईरान लाइ मसलो पैदा कर सकूं था, पर उ हाँ कंगाल थी वह हाँ ईरान वट पैसा ना, ईरान का जंग में थियल नुकसान जो हरजाणो तलब किया।

ईरान में नए फौजी बंदी सुप्रीम लीडर मुश्तबा आयतुल्लाह खामनाई 6 नवा टॉप मिलिट्री कमांडर मुकरर करे छॾिया। ईरानी मीडिया मूजिब मुकररियूं जनरल स्टाफ पासदारन इनकलाब एम्बेसी में कयूं वयूं। मेजर जनरल अहमद वेगे खे मेजर जनरल जे उहिदे ते तरक्की ॾेई पासदारन इनकलाब कोर जो कमांडर इन चीफ मुकरर कयो वियो आहे। रियर एडमिरल ऐं उज़माई IRGC नेवी कमांडर ऐं हुसैन ताइब बेसिस फोर्स जो कमांडर मुकरर। मेजर जनरल अली हथियारबंद फौज जो सरबराह मुकरर। मोहम्मद बाकिर ज़ुल्कदर सुप्रीम लीडर जो सियासी सलाहकार ऐं डॉक्टर मोहसिन रज़ाई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ख़ुसूसी नुमाइंदो मुकरर।

वफाकी काबिना मके गडियल दिफाई मुआहदे के तारीखी करार दई छो। वजीर आजम शहबाज शरीफ चवा त मके दिफाई मुआहदे जो मकसद कें भी सूरत में जारियत ना है। ही मुआहदो टिन्ही मुल्क विच में खिते में अमुन सलामती खुशहाली लाया है। वजीर आजम वफाकी काबिना के ब्रीफिंग डींदे हुरमिन शरीफन के तहफुज की जिम्मेवारी के पाकिस्तान के अवाम हथियारबंद फौज अहम फर्ज करार दिनों। पाकिस्तान सऊदी अरब तरक्या दिफाई मुआहदो पेरियां का मौजूद सहकार जो तसलसल है। शहबाज शरीफ यो भी चयो त आजाद कश्मीर के अवाम मुस्लिम लीग नून के वोट बिना कश्मीरी अवाम जो वोट नवाज शरीफ से भरपूर एतमाद जो इजहार है।

कराची जे इलाइक़े करीमाबाद अंडर बाईपास अंदर तेज़ रफ़्तारी सबबि मोटरसाइकिल सवार ॿ ॼणा फ़ौत रेस्क्यू ज़रियनि मूजिब हादसे में फ़ौत थियलनि जी सुञाणप अज़हर वलीद ज़फ़र हुसैन ऐं शहबाज़ वलीद ग़ुलाम अब्बास तौर थी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03005569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
6: 03013992836।
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 03519155724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ बीसी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100
4: उम्मीद के दिए जलते हैं
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-2724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर
6: 0301-3865-453
7: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
7: न अदा
2: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेहरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
7: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
6: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे
7: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
2: ऑफिस जीअं मेहरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर
6: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-3992836
2: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

अमेरिकी सदर जो जंग में ईरान का थियल नुकसान जो अजालो करण जो मुतालबो ट्रंप चयो आहे त अब्न हरमुस ते अमेरिका जो 100% कंट्रोल आहे। बारूदी सुरंगूं साफ़ कयूं वयूं आहिनि। ईरान हाणे कंगाल थी वियो आहे। बटस पैसा न आहिनि। गज़ा बाबति अमुन मनसूबो रद्द करण ते नियतन याहू खे जल्द जवाब ॾींदसि। अब्न हरमुस जो तहफ़ अमेरिकी हमला रोकण ऐं नाकाबंदीअ जे खात्मे सां सलाहियल आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो त अब्न हरमुस जी बंदिश जो वाहिद सबबु अमेरिकी ऐं इसराइली जारियत आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर जर्मन हममुनसिब सां फोन ते राब्तो करे ओमान सां जारी मुशावरत बाबति बे आगाह कयो।

सदर आसिफ जरदारी मुख़्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजिस जी मुकररी ऐं वाद जी मंजूरी ॾेई छॾी। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐं बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजिस जी मुकररी जी मंजूरी ॾिनी वई। सिंध हाई कोर्ट ऐं लाहौर हाई कोर्ट में कुझु जजिस जे वाद जी पिणु मंज़ूरी ॾेई वई। सुप्रीम कोर्ट जे जजिस जूं पघारूं, अलाउंसिस ऐं पेंशन बे वफ़ाकी आइनी अदालत जे जजिस जे बराबरि करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। हाई कोर्ट जे जजिस जे रिटायरमेंट, पेंशन ऐं ॿियनि सहूलियतुनि बाबति 1997 जे हुकुमनामे में तरमीम जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। हारून अख़्तर खे वज़ीर आज़म जो सनत ऐं पैदावार बाबति सलाहकार मुक़ररु करण जी बि मंज़ूरी।

मियां साहब वेझो नामालूम शख्स जो लाश है तो सुञाणप न थी। अब्दाल शाख वेझो हथ आए लाश के अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। फुलवेजो गढ़ी हसन डिस्ट्रिक्ट के आरडी 33 वटा घारो समय एकड़न ते पोखल फसल पानी हेठ अची वियो। गोठाणन पारा आपाशी अमले का घारो बंद कराने जो मुतालबो। उबावड़ो वेझो अदालत में फरार थियल बिन बदनाम धाड़ेलन वारे वाके जो केस दाखिल। एसएचओ जी फरियाद ते वाके जो केस 12 अहलकारन मथा उबावड़ो थाने ते दाखिल कयो वियो। गफलत ए लापरवाही करण जा कलम भी शामिल। गुजरियल डीह बदनाम धाड़ेल राहिब मोरियो शहर उबावड़ो जी अदालत में फरार थी वया हुआ।

ऐं सिंध समेत समूरे मुल्क में आज़ादीअ जो जशन मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। टंडो जाम में शागिर्दनि जी रैली, खैरपुर में जश्न आज़ादी जे मुनासिबत सां तकरीब, सूबे जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार, ख़ासि स्टॉल बि लॻाया विया, ॿारनि ऐं वॾनि पारां क़ौमी झंडनि जी ख़रीदारी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836।
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मुअस्सर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। You are tuning into Jio Radio FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टस्टर खोले एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, क्योंकि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आकर मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जानी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। तो प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त आ जाता है 11:21 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लेट द नेवर अपनी गाड़ियों और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। तो फिर खुदा खैरियत मौजूद, तो खुदा खैरियत।

जी इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीका कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, डैट इज www.facebook.com/EFM88 के पेज के ऊपर मिलने वाली पहली पोस्ट जिंदगी गुलजार है, जिसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. तो इसी के साथ प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, अब से ठीक ठीक ब्रेक के बाद आपको पता चलेगा अगले सेगमेंट में, जिसका नाम होगा सिर लगाओ गाना सुनाओ. और इसी के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होगा. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: रोशनी जो काफिलो गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तदरीसी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन अकेडमिक ब्लॉक जो इनकाद मेहनती मशाक तजर्बेकार तदरीसी अमलो सरसब्ज बागीचो बाइक कार पार्किंग बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी जो लेबॉरेटरियूं ऑडियो विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमेस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी इंग्लिश से खसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट जरिए मेडिकल इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीजा रांदन जो मैदान उते मुनक़द थींदड़ मुकाबला तहरीर तकरीर ज़हनी आज़माइश जा मुकाबला पंहिंजे अखियुनि जे नूर नियाणियुनि ऐं प्यारनि पुटनि जे मुनासिब तइलीम ऐं तरबियत लाइ अॼु ई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विज़िट करियो वधीक राब्ते लाइ डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मेमण मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000027234 निसार अहमद मेमण प्रिंसिपल मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453
1: अब आपकी खूबसूरती का सर वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

सहूलियतूं स्कॉलरशिप इन मिट्टी जा रंग रौनकू सरखेज असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अन्याब वधीक बान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाब आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकर

0: पर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-35-92120।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
2: हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से?
3: नूर हुसैन फ्रॉम बदीन।
2: नूर हुसैन फ्रॉम बदीन, कैसे भाई? ठीक ठाक
3: फर्स्ट क्लास बाजी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हो?
2: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताइएगा क्या प्रोग्राम सुन रहे हैं?
3: जी बाजी गूगल में सुन रहे हैं FM पे।
2: ओके, गाना सुनाएंगे?
3: गाना है ना, तेरा कसूर है मेरा कसूर, दिल टूटा है तेरे प्यार में।
2: नहीं ये तो बॉलीवुड का कंटेंट है, मतलब बॉलीवुड का गाना, ये तो हम नहीं सुना सकते, पाकिस्तानी बताए ना।
3: नहीं पाकिस्तान ये दिल आपका हुआ।
2: चले ये चलाते हैं जी। थैंक यू सो मच। गा की नहीं सुनाएंगे
3: जी?
2: गा की नहीं सुनाएंगे?
3: ये दिल आपका हुआ ऐसे ही है ना, ये दिल आपका हुआ।
2: नहीं गा के सुनाना है ना, सेगमेंट गाने वाला है।
3: अच्छा
2: हाँ चले कोई बात नहीं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। भाई शर्मा आ गए कोई बात नहीं। एंड गाना आ चुका है जी, ये दिल आपका हुआ, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। इतने अच्छे गाने के स्टार्टिंग में कोई एक से डेढ़

0: ஓகே கோ ஆன் நெக்ஸ்ட் காலர். ஹலோ ஹலோ, வாலைக்கும் அஸ்ஸலாம். கான் கஹா சி?
1: லியாகத் அலி.
0: லியாகத் அலி கேசே? ٹھیک ٹھاک ہے.
1: ஜலாம் பிரகாஷ்.
0: ஓகே, பிரோகிராம் சுன் ரே?
1: ஜி ஜி பில்கல்
0: சுன் ரே. கான் சா பிரோகிராம் ஹை?
1: ஜிந்தகி குல்ஜார் ஹை.
0: ஜிந்தகி குல்ஜார் ஹை. ஓகே, गाना सुनाएंगे?
1: बिल्कुल
0: सुना दें.
1: सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख दुख का साथी बनूंगा.
0: ओके, सारा नहीं गाना, सारा नहीं गाना. किसी को डेडिकेट करना है?
1: आप ही को करना है.
0: ओके, थैंक यू सो मच. और गाना प्ले कर रहे हैं जी. ये

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अमेरिकी सदर जो जंग में ईरान खां थियल नुकसान जो अजालो करण जो मुतालबो ट्रंप चयो आहे त आबना हरमुस ते अमेरिका जो 100% कंट्रोल आहे। बारूदी सुरंगूं साफ़ कयूं वयूं आहिनि। ईरान हाणे कंगाल थी वियो आहे। वटस पैसा न आहिनि। गज़ा बाबति अमुन मनसूबो रद्द करण ते नेतन याहू खे जल्द जवाब ॾींदसि। आबन हरमुस जो तहफ़ुज़ अमेरिकी हमला रोकण ऐं नाकाबंदीअ जे ख़ात्मे सां सराहियल आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो त आबन हरमुस जी बंदिश जो वाहिद सबबु अमेरिकी ऐं इसराइली जारियत आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर जर्मन हममुनसिब सां फोन ते राब्तो करे ओमान सां जारी मुशावरत बाबति बे आगाह कयो।

सदर आसिफ जरदारी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजिस की मुकररी है वादे की वाद की मंजूरी दई छी सिंध हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट पिशावर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ए बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजिस की मुकररी की मंजूरी दिनी वही सिंध हाई कोर्ट ए लाहौर हाई कोर्ट में कुछ जजिस के वाद की पिण मंजूरी दई वही सुप्रीम कोर्ट के जजिस जो पगारू अलाउंसिस ए पेंशन बेवफाकी आइनी अदालत के जजिस के बराबर करण की मंजूरी दिनी वही हाई कोर्ट के जजिस के रिटायरमेंट पेंशन ए बेन सहूलत बाबत 1997 के हुक्मनामे में तरमीम की भी मंजूरी दिनी वही हारून अख्तर के वजीर आजम जो सनत ए पैदावार बाबत सलाहकार मुकर्र करण की भी मंजूरी।

मियाँ साहब वे जो नामालूम शख्स जो लाश है तो सुजानप नथी अब्दाल शाख वे जो हथ आया लाश के अस्पताल मुंतकिल कयो वयो। ठुलवे जो गढ़ी हसन डिस्ट्रिक्ट हेठी वटा घारो सवें एकड़न ते पोखियल फसल पानी हेठ अची वियो गोठाणन पारां आपाशी अमले खां घारो बंद कराइण जो मुतालबो। उबावड़ो वेझो अदालत मां फरार थियल बिन बदनाम धाड़ेलन वारे वाके जो केस दाखिल एसएचओ जी फरियाद ते वाके जो केस 12 अहलकारन मथां उबावड़ो थाणे ते दाखिल कयो वियो। गफलत ऐं लापरवाही करण जा कलम में शामिल गुज़िरियल ॾींहं बदनाम धाड़ेल राहिब ऐं मोरियो शहर उबावड़ो जी अदालत मां फरार थी विया हुआ।

सिंध समेत समूरे मुल्क में आजादी जो जश्न मल्हाइण जो तैयारियों जारी। टंडो जाम में शागिर्दन की रैली, खैरपुर में जश्न आजादी के मुनासिबत से तकरीब, सूबे के नंढन शहर में कौमी झंडन की बहार, खास स्टॉल भी लगाया वया, बारन ए वरन पारा कौमी झंडन की खरीदारी।

0: सोलर है बैटरी से।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0301-1558-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान दे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM
6: 94। नूर हुसैन तुनियो ने हमें ज्वाइन किया है, फेसबुक पे कमेंट किया है जी, एंड कहते हैं कि हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू। अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, इस्मा किशोर क्या कहते हैं, मैं जरा पढ़ लूँ इसको।
7: से ये मिलती जाए जैसे कोई मेरा,
6: कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लें, लग जाएगी कॉल लग जाएगी, आपसे हम गाना भी सुन लेंगे, ठीक है। सो ट्राई तो करें, तो गाना भी हम आपसे सुन लेंगे, नो इश्यू। हल निकाला जाए इसका कि बहुत सारे लोगों की कॉल नहीं लगती, और तकरीबन हर शो में सबकी यही शिकायत होती है कि हमारी कॉल लगती नहीं है, और लगती है तो आप रिसीव नहीं करती। तो आगे चलते हैं, 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स जो कि आप लोग करेंगे, और साथ साथ हम मैसेजेस की तरफ भी मूव करेंगे। कमेंट भी हमें रिसीव हुआ है सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपसे, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। ओके, रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलेंगे, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाय सबाद बातिन, इसको सुनेंगे और कॉल्स लेंगे बहुत सारी।

0: ओके जी, इस सेगमेंट की फर्स्ट कॉल. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: अभी खोला है.
0: टंग ट्विस्टर सुना है? बोलेंगे?
1: नहीं नहीं, फोन सुना है अभी.
0: वेरी बैड. चले थोड़ा सा सुने फिर कॉल कीजिएगा. थैंक यू सो मच. 03000113488. मेक श्योर वही लोग कॉल करें जो कंटेस्ट शो बोलेंगे. और जो लोग कॉल करते हैं, मतलब बार बार कॉल करते हैं, लगातार कॉल करते हैं, डेली कॉल करते हैं, तो आप लोगों ने डेली कॉल नहीं करनी है. आप लोगों ने एक या दो दिन का गैप देके फिर कॉल करनी है. तो मैक्सिमम ऐसे कॉलर्स जिनकी कॉल नहीं लग पा रही है या जो दो या तीन दिन के बाद कॉल करते हैं, उनकी लग सके, ठीक है, ताकि इसका सारा ब्लेम मेरे ऊपर ना जाए, इसका ब्लेम कहीं और भी चला जाए. ठीक है जी. असल में जहाँ पे ब्लेम जाना चाहिए वहां पे जाता नहीं है, और जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां चला जाता है. खैर कोई बात नहीं. एक और कॉलर. हेलो हेलो हेलो हेलो, कोई है? आवाज नहीं आ रही है. वेरी बैड.

0: कल्लू का काला कब्बा कड़क कचोरी कुतर गया ये कहेंगे ठीक है.
1: देख लो होता होया कि
0: 03000113488 के ऊपर बहुत सारी लाइव कॉल्स.

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो. ओके जी, आवाज नहीं आ रही है. हेलो
1: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: मैं मोहम्मद इस्माइल, फुलशहर से.
0: मोहम्मद इस्माइल कैसे हैं? ठीक ठाक. प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका प्रोग्राम रोज सुनता हूँ.
0: क्या नाम है इसका?
1: जिंदगी है.
0: ओके, टंग ट्विस्टर सुनाए? बोलेंगे
1: जी टंग ट्विस्टर. थोड़ा सुनाइए.
0: थोड़ा सुनाओ, थोड़ा सा सुने. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया.
1: कल्लू का काला कौवा
0: कड़क कचोरी कुतर गया.
1: कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया.
0: यस.
1: कल्लू का काला कौवा कचोरी.
0: आप तो कौवे और कचोरी में बीच में ही अटक गए हैं. आपसे ना हो पाएगा. और कुछ कहेंगे?
1: जी आप सुना, खैर खैरियत है?
0: जी बिल्कुल खैर खैरियत है. जी जी,
1: मैं आपसे ये कह रहा था कि आपका जो भी प्रोग्राम है मैं अच्छे से सुनता हूँ, बहुत शौक से सुना करता हूँ. एवरी मंडे टू थर्सडे.
0: थैंक यू सो मच.
1: फ्रॉम 11 टू 1 पीएम.
0: अरे वाह, क्या बात है. मतलब कॉपी भी की हुई है, इतना शौक से सुनते हैं.
1: आपका टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप कभी कभी कहती थी तो ये अपना सुलझ महीना था, उसमें आपने कहा था कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि कभी कभी मैं सिर्फ सुनाती रहूँ, आप लोग सुनते रहे.
0: अच्छा, ये मैंने बोला था?
1: ये आपका टाइटल और ये जो बात है आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू कि आप इतना शौक से सुनते हैं भाई. थैंक यू.
1: जी जी,
0: और कुछ कहना है?
1: नहीं बस, और कुछ नहीं कहना है. एक अगर अरिजीत सिंह आप सुना दें अच्छा से आपकी पसंद का तो अच्छा हो जाएगा.
0: अरिजीत सिंह का?
1: नहीं नहीं, अरिजीत सिंह.
0: अरबिक सॉन्ग सुना दो. अरबिक सुनाती हूँ. ठीक है
1: जी जी, आप अपनी पसंद का कोई अच्छा है.
0: ओके जी, अभी सुनाते हैं आपको अरबिक सॉन्ग 03000113488 के ऊपर. बैक टू बैक लाइव कॉल्स लेंगे 03000113488. एक और कॉलर. हेलो
2: वालेकुम
0: अस्सलाम. सर दर्द आपका ही तो इंतजार था ताकि हमारे सर में हो दर्द. ये तो शेर बन गया है ना?
2: हाँ बिल्कुल.
0: चलें, इसको आप ना अपनी डायरी में लिखिएगा. ओके सरदर्द, प्रोग्राम सुना.
2: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती हूँ.
0: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती है सरदर्द. ओके टंग ट्विस्टर सुना.
2: कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया.
0: ओके स्टॉप. मतलब क्या जबरदस्त फ्लो जा रहा है आपका और ये दिन ब दिन बेहतर होता चला जा रहा है. क्या क्या राज है इसके पीछे? हमारे सुनने वालों को भी बताओ. कैसे बोलना सीखा है?
2: मतलब आपका शो सुन के तो मैंने बोलना सीखा है.
0: मेरा शो सुन के बोलना सीखा है? अरे वाह, क्या बात है. मतलब मैं
2: कॉल नहीं लगता.
0: हाँ, बस मैं ये कहूंगी कि जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोलना सीख रहे हैं, उनको मेरा प्रोग्राम सुनाएं. उनको बोलना सिखाएं.
2: मेरी तरह सीखेंगे.
0: हाँ जी, उनको बोलना आ जाएगा. और मेरे ख्याल से वाकई एक अच्छी चीज है, उनको ऐसी चीजें सुनानी चाहिए ताकि उनको बोलना आए. अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर. और कुछ कहना है? थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. नेक्स्ट क्या प्ले करें हम? नेक्स्ट हम कुछ अच्छा सा प्ले करते हैं. हियर कम्स ट्विंकल ट्विंकल बाय बिलाल सईद. इसको सुनेंगे, आगे चलेंगे. और कहाँ गया हमारा गाना? हमारा गाना ये रहा.

0: C'è il mana che...
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई।
6: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
7: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 02424601100।
8: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
9: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह दहें का शाम पंजे वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो। राबते लाए 03011 96 81।
10: السلام علیکم ادا.
11: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
10: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
11: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
10: نہ ادا؟
6: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
10: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
11: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
10: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
6: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
11: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
12: 0301-399-2836
6: محمد عمر گوری 0319-1550-724.
13: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: ये कम से कम 2 दिन के बाद कॉल करे, लेकिन इसके मुकाबले में कोई आया नहीं, तो फिर मुझे आना पड़ा।
1: चलें फिर आज की अच्छी बात भी बता दें।
0: आज की अच्छी बात ये है कि जब कोई गरीब किसी अमीर के पास सलाम करने के लिए जाता है ना, तो अमीर समझता है कि वो हमसे कुछ मांगने आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो गरीब लोग किसी अमीर को सलाम करता है, वो तो उसके लिए रब से सलामती मांग रहा है उससे सलाम करके।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या खूबसूरत बात की है जी। और कुछ कहेंगे
0: आप? आदेश के नाम एक शहर है, 2 लाइन का।
1: बोले
0: ए मेरे दिल अपने खुद की बेअसी में इतना खामोश हो जा कि लबों को आ कहने में भी तकलीफ ना हो। इसकी तशरीह करोगे आप तो आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसी बातें भी आती होंगी जो आरजेएस को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। और वाकई क्या गहरी बात की है आपने। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी। और ये था आज का सेगमेंट। अच्छा आज का जो टंग ट्विस्टर बोला है ना, वो बोला है, अच्छा अच्छा किसने बोला है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तो है हमेशा की तरह सरदर्द, ठीक है, दूसरे हैं सागर भाई, और तीसरे सेगमेंट खत्म होने के बाद आए, लेकिन बहुत अच्छा बोला SRH ने। तो ये तीनों, ठीक है जी, तीनों विनर्स हैं आज के सेगमेंट के, ठीक है जी। और इसी के साथ टाइम को अगर मैं देखती हूँ तो बहुत लिमिटेड है, और इसका मतलब ये होता है कि मुझे जाना पड़ेगा। सो जाते हैं और वापस आते हैं कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है, और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी। लिफ्ट नंबर पर थिंक हाई। सो दिस इज मी RJ रुखसार, साइंस आउट। टेक केयर, गुड बाय, व अमान खुदा, अल्लाह हाफिज।

0: अपना शहर अपना घर सखर और सखर की आवाज GFM 88
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: brought to you by
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए
4: हासिल करे सघी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस IPP जमात इस्लामी समेत बियूं पार्टी नाकाम ते शिकस्त मिली सदर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजिस जी मुकररी ऐं वाद जी मंजूरी ॾेई छॾी सिंध हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट पिशावर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजिस जी मुकररी जी मंजूरी ॾिनी वई सिंध हाई कोर्ट ऐं लाहौर हाई कोर्ट में कुझु जजिस जी वाद जी पिण मंज़ूरी ॾिनी वई सुप्रीम कोर्ट जे जजिस जूं पघारूं अलाउंसिस ऐं पेंशन बे वफ़ाकी आइनी अदालत जे जजिस जे बराबर करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई हाई कोर्ट जे जजिस जे रिटायरमेंट पेंशन ऐं ॿियनि सहूलियतनि बाबति 1997 जे हुकुमनामे में तरमीम जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई हारून अख़्तर खे वज़ीर आज़म जो सनत ऐं पैदावार बाबति सलाहकार मुक़ररु करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां बहरीन जे परॾेही वज़ीर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद जो फ़ोन ते राब्तो बहरीनी परॾेही वज़ीर पारां जल्द पाकिस्तान जो दौरो करण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर पाक सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे ते वाधायूं बि ॾिनियूं बहरीनी परॾेही वज़ीर पारां ख़िते में अमुन वारनि पाकिस्तानी कोशिशुनि जी बि हिमायत कई वई अमेरिकी सदर जो जंग में ईरान खां थियल नुक़सान जो अज़ालो करण जो मुतालबो ट्रंप चयो आहे त अबन हरमुज़ ते अमेरिका जो 100% कंट्रोल आहे बारूदी सुरंगूं साफ़ कयूं वयूं आहिनि ईरान हाणे कंगाल थी वियो आहे वटस पैसा न आहिनि ग़ज़ा बाबति अमुन मनसूबो रद्द करण ते नितिनयाहू खे जल्द जवाब ॾींदसि अबन हरमुज़ जो तहफ़ुज़ अमेरिकी हमला रोकण ऐं नाकाबंदी जे ख़ात्मे सां सलाहड़ियल आहे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो त अबन हरमुज़ जी बंदिश जो वाहिद सबबु अमेरिकी ऐं इसराइली जहरियत आहे ईरानी परॾेही वज़ीर जो जर्मन हमनसिब सां फ़ोन ते राब्तो करे ओमान सां जारी मुशावरत बाबति बि आगाह कयो

मिया साहब वेझो और थाना कपड़ा पहरियल ना मालूम शख्स जो लाश हथायो है सुजाणप न थी सकी है। अब्दाल शाख वेझो हथायल लाश के अस्पताल मुंतकिल कयो वयो। पुलिस चयो है त लाश के ख्वाजा सिराजो लगी रहयो है जेको ब खां टे डी पुरानो है। सुजाणप लाय कोशिशूं जारी आहिनि। गढ़ी यासीन में आबादगारन जो पानी के खोट खिलाफ इंडस हाईवे ते धरणो। आबादगारन एहतजाज कंदे कबालो स्टाफ वट शिकारपुर लाड़काना रोड ते धरणो आयो। आबादगारन जो चवण है त मुनसिफाणी विरिश करे पानी की खोट खत्म कई वञे। पानी मिलण ताईं एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। दड़ो लग वाली शाह सिम नाले की खाटी नथण खिलाफ रहवासी सरापा एहतजाज। बेलो रोड ते धरणो। यूसी मुरादपुर में सिम नाले की खाटी नथण खिलाफ 10 गोठन के रहवासी लोयाट स्टाप ते एहतजाज कयो। गोठन जो चवण है त सिम नाले के 10 सालन का खाटी नाहे कराई वई। सिम नालो गंद से भरजी वो है। बरसातन सबब सिम नालो ओवरटॉप थी वो है। मुख्तलिफ हंधन ता गारा लगी रहा है। वाली शाह सिम नाले की खाटी कराई वे। बी सूरत में अदालत जो दर खड़काईंदी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सखर जी फिजाइन में समायल मोहब्बत जो एहसास,
2: GAFM 88
1: सखर जो आवाज।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003।
4: खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-335-69।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।
7: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान दे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
2: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

फिर क्यों परेशान हो? तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए बदनल तमाम खूबसूरत मौसम में सुने समातन के मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। उर्कुल दुआ के समंदर चाहतों की बारिश लासवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागता कमी से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से तार तक से खुशी तक दिल से दिल तक और जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड ही स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर आपके सिद्धर आपके साथ मौजूद है। यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो यहाँ पर अगर आप वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को बताया जाता है कि आप इन तमाम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी ना खूबसूरती में किस तरह चार चांद लगा सकते हैं और किस तरह आप अपनी खूबसूरती को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप ये सीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। और आप लोगों को इस प्रोग्राम में बताया जाता है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो क्या क्या बातें हैं जो कि भाई बताना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जानना आप लोगों के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तो कई मरतबा ऐसा सीन बन जाता है कि बहुत से लोग बड़े मासूम होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि भाई मार्केट में अगर आप जाते हैं तो कौन से प्रोडक्ट आपने परचेज करने और कौन से प्रोडक्ट आपने नहीं परचेज करने हैं। और अगर आपका स्किन देखा जाए तो उसके हिसाब से भी आप लोगों ने कुछ चीजों का परहेज करना होता है। तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें जो कि आप जानना चाहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगा से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही प्यारी सी नाद के साथ। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रोग्राम में एक बहुत ही प्यारी सी नाद सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए।

0: निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे तीन मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर ए आचर से बगैर फीस के चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतुन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो। राबते लाए 0301-96-8151।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद है, तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके खूबसूरती के लिए है और किस तरह काम करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो जनाब जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें कहां से भी सुन रहे हैं, कौन कौन से एरिया से, कौन से सिटी से, वो आप हमें बताते जाएंगे ताकि हमें इस चीज का अंदाजा हो कि आप लोग जहां जहां से भी सुन रहे हैं तो वहां उस एरिया में व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। बिल्कुल जी, तो अगर यहाँ पर आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना स्टार्ट करूँ तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए जनाब तैयार किए गए हैं और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि व्हाइट एश लवली क्रीम आपके लिए मौजूद है, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आपके लिए मौजूद है, व्हाइट एश का सोप आपके लिए है, व्हाइट एश फेस वॉश है, डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब है, उसके अलावा लोशन है और साथ हेयर रिमूवल लोशन है जो कि तीन मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली अपने ऑल स्किन टाइप की लेना इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मरतबा लोग इस वजह से भी परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारी स्किन टाइप जो है ना वो कुछ सेंसिटिव सी है, हम कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने ऑल स्किन टाइप के ऊपर जो है ना वो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इन्हें तैयार ही इस तरह किया गया है। जिन प्रोडक्ट्स के अंदर नेचुरल अज़ा मौजूद होते हैं ना, तो उन प्रोडक्ट्स को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है ये एक नाइट क्रीम है और नाइट क्रीम के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि नाइट क्रीम में आप क्यों इस्तेमाल करते हैं। नाइट क्रीम इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा वाला फायदा ये आपको मिलता है कि आपके चेहरे पर जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं, आपकी रंगत जो है वो जरा साफ और क्लियर हो जाती है। तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको एवोकाडो मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, एलोवेरा मिल रहा है, ये तमाम नेचुरल अज़ा जो कि इसके अंदर ऐड किए गए हैं। और जब व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, फेयर हो जाती है और आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी मिल जाती है जितने भी साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पर मौजूद होते हैं उन तमाम तर साइड इफेक्ट से, और साथ ही साथ आपके चेहरे पर जो रिंकल्स आ जाते हैं ना वो भी खत्म हो जाते हैं। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम और अगर आप कोई अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है जनाब। और व्हाइट एश ब्यूटी सोप की सबसे खास और बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि व्हाइट एश ब्यूटी सोप जो है ना इसे हर इंसान के लिए तैयार किया है। ऐसा होता है जैसे आप नाइट क्रीम में रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और ये कुछ ऐसे गिने चुने लोगों के लिए होती है, यानी कि इन्हें टीनएजर्स लगा सकते हैं, एजड लोग लगा सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं होती। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप व्हाइट एश का ब्यूटी सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सब लोगों के लिए है, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो व्हाइट एश का ब्यूटी सोप आप रेगुलर जैसे कोई भी सोप इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई चले सोप तो अब सारे लोग ही लगाएंगे लेकिन अब हम ऐसा है कि फेस वॉश यूज करते हैं क्योंकि बहुत से लोग फेस वॉश यूज करते हैं, तो उन लोगों को भी पीछे नहीं छोड़ा जनाब, आप लोगों के लिए भी व्हाइट एश का फेस वॉश मौजूद है। और व्हाइट एश के फेस वॉश की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा ऐसे चेंज तैयार किया है, जैसे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है तो बिल्कुल वैसे ही व्हाइट एश का ब्यूटी सोप है, लेकिन व्हाइट एश फेस वॉश की जानिब जब हम आते हैं तो इसकी अगर बनाने की बात करें तो इसके अंदर व्हाइट एश ब्यूटी फेस वॉश के अंदर जो है ना विटामिन सी ऐड की गई है और उसके अलावा विटामिन ई ऐड की गई है, और साथ साथ ये इतना क्रीमी सा फेस वॉश है जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है ना वो ब्राइट हो जाती है, एंटी एजिंग के लिए आपके चेहरे पर रिंकल्स वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन अंदर से जो है ना ऐसे फ्रेश सा आपको एहसास होता है कि भाई वाकई कुछ तो आप अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट आप ट्राई करके देख चुके होते हैं लेकिन जब आप व्हाइट एश का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो इतना रिफ्रेशिंग सा आपको एहसास होगा ना कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई जान ये तो मजे के प्रोडक्ट्स है। और इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम को लगाने के तरीके का जानना चाहते हैं तो वैसे तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, और लगाने के तरीके का बिल्कुल यही होते हैं कि बस आप रात के टाइम सारे कामों काजों से फ्री हो जाएं तो अपना फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश करेंगे चाहे आप व्हाइट एश ब्यूटी सोप का इस्तेमाल करें या फिर व्हाइट एश फेस वॉश का यूज करें, अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप इस तरह अप्लाई करेंगे कि भाई आपके चेहरे पर नजर आनी चाहिए, कोई भी ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका मसाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अगर नाइट क्रीम लगाते हैं फिर मसाज करते हैं ना उनके चेहरे पर थोड़ा सा मसला बन सकता है, तो मसाज नहीं करना कोई भी नाइट क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं।
तो बिल्कुल जी सुकून से लगाइए, मोहब्बत से लगाइए, ताकि आपको रिजल्ट्स भी बड़े प्यार वाले और मोहब्बत के साथ ही मिलते रहें। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ का भी अंदाजा होना चाहिए कि वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो सकते हैं। बस उसके लिए आपने डायल करना होता है 0332738 4309, या अगर ये नंबर बंद मिले या फिर रिसीव ना हो तो दूसरा नंबर आपके लिए मौजूद है 03125025907। ये दोनों नंबर से ये आपकी आसानी के मुताबिक ही जनाब, अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जल्दी से अवेलेबल कराइए, ताकि आप भी इस्तेमाल करें और आप भी खूबसूरत हो जाए। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद। और यहाँ पर मैंने आज आप लोगों से जो सवाल पूछा है वो जरा आप लोगों को बताते चले। तो आज मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल को हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रिकी सवाल है, और थोड़ा सा मैथ भी इसके अंदर आती है, तो जो लोग मैथ में इंटेलिजेंट है उनको तो पता है कि भाई इसका जवाब क्या है, बाकी जो लोग बता रहे हैं इसका जवाब तो आप मुझे बताइए। सवाल कुछ यूं है कि आपने मुझे बताना है कि अगर 10 लोग एक दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिलाते हैं तो टोटल कितनी मर्तबा वो हाथ मिला चुके होंगे, यानी कि हम कितनी दफा जो है ना वो हाथ मिलाना काउंट करेंगे। ठीक है, ये आज इस सवाल का आपने मुझे जवाब देना है। दोबारा रिपीट करती हूँ जिन लोगों को समझ नहीं आया, अगर 10 लोग एक दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिलाते हैं तो टोटल जो है ना हम कितनी मर्तबा उनका हाथ मिलाना काउंट करेंगे, समझ गए? जल्दी से बताइए और हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए, और आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे गाने मौजूद है, तो ये एक ब्यूटीफुल सा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो आइए जरा इस गाने को सुन लेते हैं। आप कौन है, कहाँ से सुन रहे हैं बताइए मुझे जल्दी से, और हाँ पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए।

क्या बात है, आप हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम सुन रहे हैं White Asian Tea Skin Beauty Show, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है White Asian Beauty Products and Tea Skin Beauty Products. इस्तेमाल करें कौन सा प्रोडक्ट बताइए मुझे जरा. और टॉपिक आज का थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको समझने में मुझे लग रहा है कि आपको थोड़े से जमाने चाहिए, लेकिन इतना भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप मुझे बताने वाले हैं. टॉपिक कुछ यूं है कि अगर 10 लोग एक दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिला रहे हैं तो टोटल कितनी मरतबा वो हाथ मिलाना हम काउंट करेंगे. ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे जवाब पता है. बाकी जिनको नहीं पता उनको तो जाहिर सी बात है मुश्किल लगेगा. अच्छा, ये हमारे साथ हैं जी अहाल जरवार भाई, मुझे लग रहा है कि आप मैथ में बहुत जीनियस इंसान हैं. और अली मोहम्मद हमारे साथ हैं. अली मोहम्मद भाई, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है. किशोर भाई कहते हेलो हाय, हम अच गया अदा के छायो छपा मजे में तमा के छायो. और अली मोहम्मद भाई वालेकुम अस्सलाम. निदड़ी कहते टॉपिक 20 या 21 दफा. ये कैसे समझाओ जरा मुझे. अच्छा, मुझे लग रहा था आहाद आप सिर्फ एक ही जवाब देंगे, लेकिन आपने सवाल के दोनों पहलू से जो है ना मुझे सही जवाब दिया है. दोनों पहलू आपने देखे, क्या बात है, इम्प्रेस्ड. प्यारी मोमना हमारे साथ मौजूद, कहती टॉपिक आई थिंक 20 हैंड्स. ओके वासा भाई कहते अदी सिडो थोरो मुझे दिमाग परे हलियो वयो आहे मोटाए अचान त पोइ जवाब ॾियां मतलबु. ओके ओके नो इशू. अच्छा सादिया, आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है. ठीक है जी. प्यारी मोमना, आपने गाने की फरमाइश कर दी है, लगाते हैं जी आपका गाना भी. दर्दी दिल आ चुकी है. वालेकुम अस्सलाम. कहती चंदा जानी आप कैसी हैं. मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं स्वीटी आप कैसी हैं. और कहती हाँ मैं भी आ गई.

चाचा ये बात पूछ रहे हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स किस क्रीम में ज्यादा है, व्हाइटिश क्रीम में या डी स्किन क्रीम में। अब बात जरा आप लोगों को ये मैं जरा एक्सप्लेन करती रहूं। व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है इसमें नेचुरल अज़ा मौजूद है, लेकिन जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है ना उसे डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है, तो उसे डॉक्टर्स के हिसाब से जो ना उसमें वो चीजें ऐड की गई हैं, यानी कि डॉक्टर्स को लगता है कि ये चीजें आपकी स्किन के मुताबिक हैं और अच्छा काम करेंगी, तो उसकी चीजें वही जो है ना वो चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है, जो कि मैं आपको वाजे बताती हूँ कि फिलहाल फिलहाल चीजें जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में तो आप जानते हैं एवोकाडो, मिल्क और एलोवेरा मौजूद है। और उसके अलावा साथ ही आपको शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया चाचा तमाम गाने जी फरमाइश करी सड़िया हलायूं था बाबा अखला खुशो में सुन रही थी, नाइस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा मेहताब अली इंटर भाई में सुन रही थी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आइए मेहताब अली फ्रॉम सुल्तानपुर केंट, मेहताब भाई आपको वेलकम कहा जाता है, थैंक यू सो मच। के साथ साथ किशोर कहते अरे हाथ मिलाना है लेकिन किस को कहां कैसे मैं समझा नहीं, यही तो मसला है। ओके जी, और ये हमारे साथ निदली कहती है कि एवे तुक्का मारा था मैंने देख लो वो जी अरबिक जबान में गाना था। अच्छा कहते अदा मेरे ख्याल से 10 मरतबा और आपके हिसाब से 45 आई थिंक। वो मेरे हिसाब से कैसे बताओ जरा। निदली कहते कि पहले ही सर घूम रहा है मेरा, नींद पूरी नहीं करी और तुम्हारे टॉपिक और सर घुमा देते हैं मेरा। नहीं आज तो मैंने सोचा था आप लोगों से हल्का फुल्का सवाल पूछूंगी, लेकिन बस फिर सोचा नहीं भाई क्यों ही छोड़े

0: उसका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कई मरतबा आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें फिर आप सारी उम्र जो है ना वो पछताते रह जाते हैं कि भाई काश हमने ऐसा नहीं करना था, और काश आप ऐसा जो है ना अगर कर चुके अपनी लाइफ के साथ, अगर आप अपनी स्किन खराब कर ही चुके हैं तो आप कोई मसला नहीं, वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी स्किन जो है ना वो रिपेयर कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, अपने चेहरे के जितने मसाले वो सारे दूर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा वाला सीन है कि आप नाइट क्रीम में नहीं लगा पाते हैं तो जी आपके लिए वाइटिश लवली क्रीम मौजूद है। कोई हल्का फुल्का फार्मूला आपकी लाइफ में नहीं है, तो वाइटिश लवली क्रीम आपकी स्किन के मुताबिक ही तैयार की गई है। ये एक फेयरनेस क्रीम है, फेयरनेस फार्मूला तो हर किसी को पसंद आता है, हर कोई इस्तेमाल करता है, हर किसी के पर्स में बैग में मौजूद ही होता है। तो वाइटिश लवली क्रीम रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन के साथ तैयार की गई है जनाब। इसके अंदर 30 वाइटामिन के कैप्सूल एड किए गए हैं, और बात यहीं पर नहीं रुकती, इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है, यानी कि अब आपको अलग से कोई भी सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल करें और आप यूं चुटकियों में रेडी हो चुके होंगे। सो वाइटिश लवली क्रीम जो कि एक फेयरनेस क्रीम है जिसे आपके घर के सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल करेंगे। इतना जबरदस्त फार्मूला अगर आपके पास मौजूद है तो भाई मैं ये सोच रही हूँ कि आपने सोचना नहीं है, बस आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई भाई सिदरा बाजी सही पे चवे। उनके अलावा अगर तुम्हारा एक्नी की वजह से परेशान है तो एक्नी के खत्म करने के लिए तुम्हारे पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अवेलेबल है। आई जनाब डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो तमाम नालो बुधी समझी वेदा होता तो ही आयुर्वेदिक फार्मूलो है, मेडिकेटेड फार्मूलो है, जैसे डॉक्टर्स ठाए हुआ है, बिल्कुल अंदर जो ना जड़ी बूटियों एड थे तवाजी स्किन जहाँ एक्नी तो खत्म कंदो ही कंदो, पर तवाजे चेहरे जा जेके निशान अची वेंदा आहिनि, एक्नी जा निशान हुजनि कोई चोट या फिर कोई सड़न जो निशान आ, कोई नंढपण में तव्हां खेॾंदा तव्हांखे चोट लॻी वई आहे फेस ते उहो चोट जो निशान आहे, उनखे तव्हां रिमूव करणु चाहियो था त पोइ तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करे सघो था। ओके जी, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये हैं कि आप सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे, यानी कि दो मरतबा लगाना होता है, और साथ ही साथ दो मरतबा लगाने से पहले आपने ये करना है कि आप अपना फेस वॉश लाजमी किया करें। फेस वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फेस वॉश करने से ये होता है कि आपके चेहरे पर जितनी गंदगी होती है, डस्ट पॉल्यूशन वगैरह होता है, वो सब रिमूव हो जाता है। उसके बाद ही जब आप कोई भी प्रोडक्ट अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं तो तब आपके चेहरे पर जो प्रोडक्ट रिजल्ट देता है वो बहुत शानदार देता है। तो डॉक्टर पिंपल ट्यूब को भी बिल्कुल आपने ऐसे ही लगाना है।
1: कलंदर पीर पीरा हजरत मेरा
0: ओके जी, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को आपने अपने पूरे चेहरे पर नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि जहां जहां मसला है, जहां एक्नी, जहां निशान है, वहां वहां आपने डॉट डॉट की सूरत में इस्तेमाल करना है। तो बिल्कुल यही तरीके कार फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी आपको बता रही हूं, ये तमाम प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही शानदार क्वालिटी के और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो लाजमी ट्राई करके देखिए और खूबसूरत हो जाइए।

इरम कहती है लव यू सो मच मुझी प्यारी दोस्त, दिल चवे थी तो जो नालो मां सुकून रखी छड़िया, यार आपको डेडिकेटेड ये वाला गाना लगाना। ओके आई विल ट्राई। अच्छा ये हमारे साथ हैं जी वफा ममताज अली खोसू भाई, गोठ रईस गुल हसन खोसो से। वफा ममताज अली खोसो, कलंदर बख्श खोसो, वालेकुम अस्सलाम। मेरे शो तमाम जबरदस्त आए तमाम जो थैंक यू भाजू मोहब्बत हुआ है।

भाई तव्हां टॉपिक जो जवाब ॾिनो आहे, ठीकु आहे जी, ठीकु आहे अखलाक भाउ, तव्हां बि टॉपिक जो जवाब ॾिनो आहे, ओके हो गया जी. अच्छा बिल्कुल जी, आप व्हाइटिश के तमाम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. सारे प्रोडक्ट जो भी हैं वो आप लोगों के स्किन के मुताबिक ही तैयार किए गए हैं. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई व्हाइटिश का ब्यूटी प्रोडक्ट फला वाला हमारी स्किन के मुताबिक है, तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना कि हमारी स्किन के ऊपर तो कोई प्रोडक्ट सूट ही नहीं करते हैं, तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए. क्योंकि इन्हें इस तरह तैयार किया गया है कि आपकी ऑल स्किन के ऊपर जो है ना वो अच्छे से सूट कर जाएंगे. तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम हो, व्हाइटिश ब्यूटी सोप हो, व्हाइटिश का फेस वॉश हो, डॉक्टर पिंपल ट्यूब हो, या फिर व्हाइटिश की लवली क्रीम क्यों ना हो. अच्छा व्हाइटिश की लवली क्रीम तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है. मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, हमारे घर में सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर सकता है आपकी ऑल स्किन टाइप के मुताबिक. और जनाब इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड किया गया है, तो चाहे आप किसी काम से जा रहे हैं तो आप व्हाइटिश लवली क्रीम लगाएं और बस आप रेडी हो चुके हैं. ओके जी, सो यहाँ पर प्रोग्राम है आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का होगा. यहाँ पर टाइम हुआ है जी न्यूज ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाला है. वापसी जल्दी आप लोगों के पास, तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ ही मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: में तरमीम जी भी मंजूरी ॾिनी वई हारून अख़्तर खे वज़ीर आज़म जो सनत ऐं पैदावार बाबति सलाहकार मुक़ररु करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार सां बहरीन जे परॾेही वज़ीर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद जो फोन ते राब्तो बहरीनी परॾेही वज़ीर पारां जल्द पाकिस्तान जो दौरो करण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर कई पाक सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे ते वाधायूं बि ॾिनियूं बहरीनी परॾेही वज़ीर पारां खिते में अमुन वारनि पाकिस्तानी कोशिशनि जी बि हिमायत कई वई अमेरिकी सदर जो जग में ईरान खां थियल नुक़सान जो अज़ालो करण जो मुतालबो ट्रंप चयो आहे त अबन हरमुस ते अमेरिका जो 100% कंट्रोल आहे बारूदी सिरंगूं साफ़ कयूं वयूं आहिनि ईरान हाणे कंगाल थी वियो आहे वटस पैसा नाहिनि ऐज़ा बाबति अमुन मनसूबो रद्द करण ते नेतन्याहू खे जल्द जवाब ॾींदसि
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120
5: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जैसे मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
6: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014514456 आई तौकीर अहमद 03616237393
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
7: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात
8: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
9: अस्सलाम वालेकुम अदा।
10: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न अदा?
11: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
9: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
10: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
9: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
11: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
10: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
12: 03013992836।
13: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर। और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: जो मिले हाइलुरोनिक एसिड सीरम के एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ एंड सल्फेट फ्री मेडिकेटेड फॉर्मूला जो स्किन को डीप क्लेंस करे जेंटल केयर के साथ और सीरम का पावरफुल फॉर्मूला चेहरे की डलनेस को रिमूव करे स्किन को हाइड्रेट और रिवाइटलाइज करे हर वॉश में चेहरा रहे स्मूथ एंड रिफ्रेश एवरी डे
1: हर दिन मिले फ्रेश निखार डी स्किन फेस वॉश
0: अब हर दिन डी स्किन फेस वॉश अ प्रोडक्ट बाय डी एस कॉस्मेटिक्स

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. हाँ जी जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. उसके अलावा अगर आप वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आप सबसे पहले जानना चाहते हैं कि भाई इनके बारे में क्या ऐसी खास बातें हैं जो हमें पता नहीं है, तो उनके बारे में पहले आप जान लीजिए उसके बाद ही इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए. ऐसा वाला सीन बनाइए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भाई कुछ ना उनको पता नहीं होता कि भाई हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या ऐसा साइड इफेक्ट है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करने के बाद हमें मिलेंगी. तो बहुत से लोग ऐसे बिना मालूम के बिना नॉलेज के जो ना वो चीज़ें इस्तेमाल करना लग जाते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना आप लोगों ने. आप बस पहले जान लिया करें कि जो भी चीज आपको बताई जा रही है तो उसकी क्या क्या ऐसी खास बातें हैं जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट हमारी टाइप का तो नहीं है. और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. प्रोग्राम आप लोगों का अपना है और यहाँ पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के अपने ही है. तो चाहे आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाएं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाएं, हर तरह से आपकी खूबसूरती का ख्याल रखा गया है, हर तरह से आपकी खूबसूरती को सेफ रखा गया है, हर तरह आपकी खूबसूरती की हिफाजत की गई है. और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बता लिया. सो अभी आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बल्कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे. तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट्स और इनका इस्तेमाल आप क्यों करेंगे, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को सिर्फ दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. सिर्फ दो से मुराद यही, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ दो हैं तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. भाई बा आयन पर चौदह ना हजार ते भारी आयन ही उहा वाली कार अथव. सो अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना चाहो था, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगर तुम्हें डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली रहो है, ही बई चीजों जोड़ी में आए नहीं चवंदा ना जोड़ी में ही तुम्हें चीज इस्तेमाल करना घुर्जे, जोड़ी जो पाइजो ही मजो होंद है. सो अगर तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो तो सान तुम्हें डी स्किन जो फेस वॉश भी वठनो पवो. उनखा अलावा अगर तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना चाहो था तो मां बिल्कुल तुम्हें बुधाईदम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा केतरा सारा फायदा जे के तुम्हें मिली सकता जदे तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करदा. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोग सबसे पहली बात तो ये है कि ये जान लें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूला यानी कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इसे तैयार किया गया है. बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है और खास करके उन लोगों के लिए, तो भाई ईद ही ईद हो गई है, जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है और सेंसिटिव स्किन वाले लोग जाहिर सी बात बहुत ज्यादा परेशान होती है अपनी स्किन को लेकर, तो कोई बात नहीं जनाब, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. हाँ जी भाईजान, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के मुताबिक ही तैयार की गई है. सेंसिटिव स्किन के ऊपर तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए लाजमी, ताकि आपकी स्किन रिपेयर हो जाए, आपकी स्किन खूबसूरत हो जाए, आपकी स्किन पर जितने मसाले वो सारे खत्म हो जाए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है, इसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स है, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है और ये तमाम जो चीजें हैं आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. नेचुरल अजातों आपकी स्किन के लिए जरूरी होते हैं लेकिन ये तमाम चीजें भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है और अगर डॉक्टर्स ने तैयार किया गया है तो यकीन जाने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा. और पाकिस्तान में दो चार ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर वाइटामिन ई बीड्स मौजूद हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन्हीं में आती है. और ना सिर्फ पाकिस्तान में मिलने वाला प्रोडक्ट है बल्कि बाहर के ममालकात में भी आपको मिल सकती है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक बहुत ही कुल मिलाकर शानदार और बेसिक क्वालिटी का प्रोडक्ट है, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा. और ना मिलने की सूरत में आपको नंबर्स बता रही हूँ जिनके ऊपर आप राबता करते रहिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल हो जाए. तो नंबर आप जरा नोट कीजिए, नंबर है 033-27-38-4309. और जनाब उसके अलावा अगर ये नंबर आपको बंद मिले, बिजी मिले, रिसीव ना हो, तो उसके ऊपर दूसरा नंबर आपको बता रही हूँ वो जरा नोट कीजिएगा. दूसरा नंबर है 03-12-50-25-907. 03-12-50-25-907.
9907 ये दोनों नंबर्स आप डायल कर सकते हैं और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा सकते हैं. तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और इस्तेमाल करते जाइए. खूबसूरतियाँ हासिल करना आपका भी पूरा पूरा हक बनता है, तो लाजमी आप खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए. व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करती रहिए. अपने हिसाब वाला प्रोडक्ट चूज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए. इसी के साथ साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है वो जरा रिपीट करते हैं. जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है तो उनको भी पता होना चाहिए आज के प्रोग्राम का सवाल क्या है. बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का टॉपिक कुछ यूं है कि आप मुझे बता रहे हैं कि अगर 10 लोग एक दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिला रहे हैं तो टोटल कितनी मर्तबा हाथ मिलाना हम काउंट करेंगे.

हांजी, असल न इनकार कंदस पर इनकार तव्हां हिते बि न आहे करणो, तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणो पवंदो बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे जेका तव्हां हर स्किन जे मथां इस्तेमालु करे सघो था। उन खां अलावा भई तव्हांजे मैसेज तरफ़ अचूं था त कीरस सां गॾु मौजूदु आहे संजय जी पाल हमारे साथ। संजय जी पाल भाई कहते हाय, ये मैसेज मेरे दोस्त को डेडिकेट है, आपका दोस्त है आकाश भिंडू शरीफ से है, उसको डेडिकेट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बोलना है ये कि मेरी तरफ से बोलना मेहरबानी होगी आपकी, मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, थैंक यू सो मच। अभी ये मैसेज मुझे थोड़ा समझ नहीं, जैसे आपने लिखा है मैंने वैसे ही बस पढ़ दिया। आपका दोस्त सुन रहा है तो बस वो समझ जाएगा। और मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आबाद से आपको वेलकम कहा जाता है। और स्मार्टू गोपांग हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते सिद्रा, आई एम लिसनिंग योर शो इन कंपल्सरी, वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, माशाल्लाह, प्लीज प्ले मंजूर सखीरानी, हाजिर हलायूं था। किशोर भाई कहते हैं कि अगर एक शख्स 10 लोगों से हाथ मिला रहा है तो जवाब एक कैसे होगा, एक तो मैं कह ही नहीं रही हूँ ना, एक किसने बोला है, बुधाए वो मानो जेको एक तो चवे। मिली करे सब कुटकी डींदासीं। न बाबा, सब सियाणा आहियूं। अख्तियार अली सिंधी भाई हमें सुन रहे हैं, अख्तियार भाई आपको वेलकम कहा जाता है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। और बताएं कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। सुमाटो गोपांग कहते हैं सिद्रा, रात मैंने ख्वाब देखा भाई, आपका ख्वाब जो है ना ये शायद कभी पूरा नहीं होगा। और वासु भाई कहते थे सिडो डिस अन्या वेठो आया पोस्ट में, वाह साईं वाह, वासु भाई जो तो कुछ जवाब ही ना है ना, वासु भाई थैंक यू थैंक यू। अनवर भाई सां सां गड मौजूद है, अनवर भाई तां जो मोहब्बत हुआ है बाबा, बस हर के जो पांजो पांजो गड़ो मिजाज हुंदो ना, गाल के थोड़ो समझंदा कयो। ना बाबा, मां जबल ते कोन चवंदम तां खे, जबल इज डेंजरस। अच्छा अच्छा अच्छा, अखलाक भाई कहते हैं सिद्रा स्कूलन जी मोकल करा, बाबा मुझे वस में तो यो आहे ही नहीं, सो तवा तो खैर वेंदा कोन स्कूल, तवा जब बाकी बार वन था, सुठी गाल है ना, बारन के पढ़ायो लिखायो बाबा, आईएस वाईएस बनायो।

ख़बरें थींदी न बाबा छो त जेका शइ न थींदी उन जे बारे में त ख़बर हूंदी आहे न दर्दे दिल कहती है टॉपिक चंदा दस या पांच बाकी तो लास्ट में तुम बताना ओके ओके किशोर भाई कहते अदा तुझे लिसनर के समझाए मुखे रिक्वेस्ट न मोकलन आई एम छोकरो बाबा ये थोड़ा मतलब क्रेक आयन दिमाग खान जे के ता के रिक्वेस्ट मोकलन था अच्छा तुम सीधो ब्लॉग कर मारे छींदा कर समझो और ये हमारे साथ हैप्पी आ चुकी है हैप्पी स्कूल का मोकल मिली वही तुम्हें वालेकुम असलम तुम्हें चौं था भली करी आया अनवर भा तुम टॉपिक जो जवाब दिनों आए वस सही वाह तरक्की थी वही बो

बन जी दीमक लिदड़ी कहती ये मेरा मून है आई समझ जी जी बिल्कुल हम समझ गए हैं। अच्छा फजीला सिंधी हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम हैप्पी ट्यूसडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिद्रा मुस्कान आप कैसी हैं जानू मैं ठीक हूँ जानू तुम बताओ कैसी हो सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और बाजी और ऑल स्वीट सिस्टर्स को भी ओके ओके। अच्छा इस गाने की फरमाइश हमें हमारी इरम ने कर दी थी तो इरम ये गाना तुम्हें डेडिकेट जाता है।

भले रखो बाबा, भले रखो मोकल गई। उनके अलावा तुम पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो ही बुधायो था तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोने या फेस वॉश अड़ो था। अच्छा कमर जमान बलोच कहते हैं सिद्धराज जी आप कैसी हैं, 4 साल के बाद फिर वापस आए हैं आपके शो में, आपको वेलकम कहा जाता है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।

Aili, mare shade safa. सफ़ाई ते वेठा हुजो तव्हां कारे न वञो मां मोटी जांदी तव्हांजे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थियो आहे ओ हीअं वञूं था ओ हीअं मोटूं था सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स घणो ऐं सोणा थियो

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

बिल्कुल जी हिकु सोणो वरी पाण खे ठाहे थो आए हाय समझो था खूबसूरती किथे वनी पहुचंदी सो बिल्कुल तव्हां बि इस्तेमालु करे सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम

ओके जी सो तव्हांजा मैसेजेस आहिनि उन तरफ़ बि अचूं था टाइम तेज़ी सां गुज़रंदो वञे थो मतां कुझु रहिजी न वञे अच्छा ये मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्ती वाह वाह वाइट एश ब्यूटी क्रीम और मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई वालेकुम अस्सलाम आपने दोबारा से वही मैसेज किया है नहीं बल्कि इस मैसेज में आपने गाना लिखा है गाना सुनाए कोई भी गाना सुन लीजिए सारे गाने आप सब लोगों के लिए होते हैं मकसूद मल्हा आपको वेलकम कहते हैं अरिबा कहती हैं आप ही मेरी प्यारी भाभी इरम अच्छा ये तो अच्छी बात है ना अच्छी बातें जो है वो अच्छी बातें होती है अच्छा उन खां अलावा गोठ मोहम्मद तैयब थे हाबीबुला थे कहते तवान जो शो वेरी नाइस आए थैंक यू वेरी मच प्यारा भाव अच्छा हाँ वरी असा मंजूर सखिराणी का पोए मास्टर मंजूर जो गानों बुधंदी ही गानों भी ढो खूबसूरत गानों है फरमाइश मुख्य मेहताब भाग

अरे चाचा चए थो प्रोडक्ट्स में दम आहे पर इहो तव्हां जेको चयो न मूंखे सफ़ा ॻाल्हि सम्झ में अची वई. बिल्कुलु तव्हां सही था चओ चाचा. वॾो माण्हू जेको आहे न हमेशह सही ॻाल्हि कंदो आहे. ऐं तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर बि कंदा हलो. और अलीज़ा बि हमारा शो सुन रही है. अलीज़ा को वेलकम कहा जाता है.

ओके जी, ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो पिया ऐं गॾो गॾु तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु बि कयो पिया ऐं डी स्किन फेस वॉश बि तव्हां लॻायो पिया ऐं तव्हां कुझु ॾाढा कंजूस बि आहियो जेके नथा वठो वठो बाबा, ख़ूबसूरत थियण त हर कंहिंजो हक़ हूंदो आहे, सो तव्हां बि वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश। अगरि तव्हां सोचो था त अञा असांजी उमिरि नाहे थी, असां क्रीमू न आहियूं हणंदा, त तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश वठी सघो था, उहो इस्तेमालु करे सघो था। फेस वॉश त हर कोई लॻाए सघे थो, सो तव्हां बिल्कुलु फेस वॉश ट्राए कयो, तव्हांखे यकीननि ॾाढो सुठो लॻंदो। ऐं नथो मिले त जेके नंबर तव्हांखे ॿुधायो वञनि था, नंबर ते तव्हां राबितो लाज़मी कंदा कयो। अच्छा सादी, तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि अची पियो, थैंक यू हुनजे लाइ। अब्दुल गफ़ार भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहें भाई जान, आप भी सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम को पसंद करते हैं। निदड़ी कहती है कि ये किसने बोला वो बताया तो सही। और कहती आई एम नॉट जेलस, पर लग रहा है कि हो रही हो अच्छा अदा चई तो सको नालो तोते ठहे न तो माँ कुछ अलग सोचो आए, बुधायो था खबर तो पवे। प्यारी मोमना कहती है आपका शो सुनकर हमें सुकून मिलता है, थैंक यू सो मच प्यारी मोमना। और उनका अलावा संजय जी पाल भाई कहते मेरा एक पसंद का गाना है, और गाना जो आपने बोला है वो जरा इंडियन गाना बोला है, तो इंडियन गाने भाई हम नहीं लगाते हैं। और आकाश जयपाल हमारे साथ कहते हैं सिद्रा जी मैं हूँ आकाश जयपाल, और आपने जो बात पूछी है वो भाई मुझे कैसे पता, मैं कोई रिश्ते कराने वाली आंटी हूँ, आप अपने घर वालों से बात करिए अच्छा दर्द देने लगती है कि उन लोगों पर सलामती हो जिन्हें हमने जब कभी रूह से आजादी दी तो उन्होंने दिल की धड़कन से जवाब दिया। डेडिकेट टू यू चंदा, थैंक यू सो मच जाना। हाज़िर हाज़िर मां सवाल जो जवाब तव्हांखे बिल्कुलु ॿुधाए वेंदमि, पर हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि त तव्हां जिन माण्हुनि पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर न कयो जल्दी करे वठो, टाइम थोरो वञी बचो अथव, टाइम नाहे, टाइम नाहे बाबा। उन खां अलावा ये हमारे साथ रमज़ान भाई कहते हाय भेण कैसी हो, भेण तव्हांजी सफ़ा भली आहे, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो, ठीकु ठाकु आहियो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो था कोन। अच्छा कमर ज़मान बलोच भाई कहते कहां से लाऊं वो गुजरा हुआ वक्त जहां तुम हर वक्त मयसर हुआ करते थे, वाह वाह वाह वाह। और रमजान भाई कहते हैं कि तेरे बदले हुए लहजे से कहीं बेहतर है हम जुदाई की अजियत ही गवारा कर लें, कुछ खुदा ऐसा करे तुझको मोहब्बत हो जाए, तू पुकारे हमें हम तुझसे किनारा कर लें। आय हाय।

0: जलना है।
1: अगर ये जो मेरा रोजगार है ना, मैं ऐसे बहुत खुश हूँ भाई, और कोई रोजगार ना ही बोले मुझे। और ये भाई कहते हैं कि कमेंट ऐसी लगे तो तवा के गोठ जा सरपंच आयो, बिल्कुल मुखे में लगे तो मानू अच्छी ये पाना मसला बुधाईंदा है। ॼण मां भई सभिनी जा मसला हल करण वेठी आहियां, मां सिर्फ़ स्किन जा मसला हल कंदमि। हिकड़ी ॻाल्हि ॿुधायो बाबा, स्किन सां कहिड़ो प्रॉब्लम आहे, उन जो हल तव्हांखे ॿुधाए सघां थी।

से उड़ जा। अच्छा ये सैड गाना हमें निदा ने फरमाइश किया और कहती है मूड सैड है और सैडी गाने, भाई आप क्यों मूड ऑफ है तो ऐसा सैड गाना फरमाइश कर चुकी हैं। भला भला गाना फरमाइश कदा कयो जी, मुझे लास्ट लिंक भी भलो थी वने प्रोग्राम जो किनो करे।

आकृति क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय करिए। और साथ साथ आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था प्रोग्राम का, वो थोड़ा सा दिमाग का दही बनाने वाला सवाल था, लेकिन उसका जवाब जो है ना वो जरा आपको बताती हूँ। पहला जवाब तो उसका 45 होगा, क्योंकि वो जरा आप मैथ लगाते हैं तो उसका 45 जवाब आएगा। दूसरा उसका जवाब 90 आता है। अगर एक इंसान 9 लोगों से एक एक मरतबा हाथ मिलाएगा तो काउंट करेंगे तो वो 90 होगा। बाकी अगर आप थोड़ा मैथ लगाते हैं तो उसके हिसाब से जवाब जो है वो 45 आएगा। तो ये दोनों इस सवाल के जवाब बनते, 45 और 90।

ओके सो बिल्कुल आप फेस वॉश इस्तेमाल करती रहिए डी स्किन का. किस तरह इश्क मोहब्बत तुमसे हुई, दिल का खसारा मेरा हुआ, एक तरफा था प्यार मेरा ये बता. अता समाटो गोपांग कहते हैं तू असा लिसनर्स जो वडेरू आई अल्लाह जाई उदा पग किथे आ मुंजी वो साथ रह के भी है जुदा. ओके जी आकाश जी पाल भाई हमारे साथ है, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ है, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए. अच्छा मैं समझा खुद बोलोगी सुनो. नहीं नहीं मैं सुनो वाले मूड में नहीं हूँ वो तो बस मूड मूड की बात होती है.

भुला दे। ओके जी, जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू मेहता भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया और सारे लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम में मैसेजेस किए, शामिल रहे। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, यहाँ पर हमारे जाने का वक्त करीब आ चुका है। सो वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझे थे पई बाबू 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन कंदा ऐं वेंदे वेंदे बि तव्हांखे चवंदी वेंदमि बाबा त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश हुजे या वाइट एज जा प्रोडक्ट्स हुजनि, उहे सभु तव्हां ट्राए करे ॾिसो, तव्हांजी ख़ूबसूरती जे मुताबिक़ ई आहे, तव्हांखे कोई बि नुक़सान न पहुचंदो बल्कि तव्हांजी स्किन सफ़ा सुहिणी सुहिणी थी वेंदी। सो मर्द मायूं सभु हणी सघो था डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लॻाईंदा रहो ऐं सुहिणा सुहिणा थींदा रहो। सो किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत खुवायूं, जंहिंजा फीडबैक रहिजी विया आहिनि, जंहिंजा गाना रहिजी विया आहिनि, सभिनी खां माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी न आहे बाबू, सिन सलामत सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, love you all।

0: दर निजात पर।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: जजेस के हलफ खणायो सदर आसिफ जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत सूबाई हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस जी मुकररी है। कुछ जे मुद्दे में वाद जी मंजूरी दिनी हुई। सदर सनत है पैदावार बाबत हारून अख्तर के वजीर आजम जो सलाहकार मुकरर करने जी भी मंजूरी दिनी हुई।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
2: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

मेरा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: आप सुन रहे
3: वजीर आजम जी सदारत में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबत इजलास कस्टम पाउंडेड वेयर हाउसेज की थर्ड पार्ट कराने की हिदायत शहबाज शरीफ चयो तो कस्टम पाउंडेड वेयर हाउसेज में भी बेजाबकिन की का भी गुंजाइश ना है। बेजाबकिन में मुलविस अमलदारन खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वे। नायब वजीर आजम इसहाक डार से बहरीनी की परेही वजीर अब्दुल लतीफ बिन राशिद जो फोन ते राबतो बहरीनी परेही वजीर पारा जल्द पाकिस्तान जो दौरो करण की ख्वाहिश जाहिर कई। पाक सऊदी परेही वजीर पारा खिते में अमुन वारन पाकिस्तानी कोशिशन की भी हिमायत कई वही। अमेरिकी सदर जो जंग में ईरान का थियल नुकसान जो अजालो कराने जो मुतालबो ट्रंप है अपना हरमुज से अमेरिका जो 100% कंट्रोल है। बारूदी सिरंगू साफ क्यों वन ईरान हाँ कंगाल वो है वटस पैसा ना गजा बाबत अमुन मनसूबो रद्द करने नेतन जाऊ के जल्द जवाब डींद। अपने हरमुज जो तहफुज अमेरिकी हमला रोकने ए नाकाबंदी के खात्मे से सलहड़ियल है। ईरानी परेही वजीर अब्बास इराकची अपने हरमुज की बंदिश जो वाहिद सबब अमेरिकी इसराइली जहरियत है। ईरानी परेही वजीर जो जर्मन हमुनसिब से फोन से राबतो कर ओमान से जारी मुशावरत बाबत भी आगाह किया। आजाद कश्मीर में थियल चूंडन जा टे मरला मुकम्मिल नून लीग 38 सीटन में 24 ते कामयाबी माणी हुकूमत ठाण की पोजीशन में अची वही। पीपल्स पार्टी जो 12 सीटन से बो नंबर आजाद कश्मीर जो वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर पैंजी सीट खटण में कामयाब। अवाम दोस्त बाजू पार्टी एक सीट हासिल कर सगी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस IPP जमायत इस्लामी समेत बी पार्टी नाकाम। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो सरबराह सरदार अतीक भी हाराए वो। अगोणो वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास राणा के भी बिन तकन ता हाराए वो। मौजूदा सिस्टम नाकारा हुकूमतू नाकाम थी चुकी है। आईन का मथा को भी कदम न खो वे नवा यूनिट जा सूबा भी अवामी राय से ठहण घुर्जन। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे जमात इस्लामी जा अमीर हाफिज नईम चया है अवाम के खीसन से टैक्स की सूरत में धाड़ो न हो वे। सिंध हुकूमत कराची के खंडर बनाए छो है। सूबे में करप्शन राज कायम है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान सादिया जावेद चया है हाफिज नईम सस्ती शोहरत लाए लाशन से सियासत न करे सिंध एक है सदाई रांद। गढ़ी यासीन में आबादगारन जो पानी के खोट खिलाफ इंडस हाईवे से धरणो। आबादगारन एहतजाज कंदे काबलो स्टाफ वट शिकारपुर लाड़कानो रोड से धरणो आयो। आबादगारन जो चवण है तो मुंसिफानी विर्श करे पानी की खोट खत्म कई वे पानी मिलने ताई एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। दड़ो लग वाली शाह सिम नाले की खाटी न थियण खिलाफ रहवासी सरापा एहतजाज बेलो रोड खाटी न थियण खिलाफ 10 गोठन के रहवासियों लोठिया स्टाफ से एहतजाज किया। गोठान जो चवण है सिम नाले के 10 साल का खाटी ना कराई वही। सिम नालो गंद से भरज वो है बरसात सबब सिम नालो ओवरटॉप थी वो है मुख्तलिफ हंधन ता घारा लगी रहा है। वाली शाह सिम नाले की खाटी कराई वे बी सूरत में अदालत जो दर खड़काई। टंडो आदम में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से मुबैन कब्जे खिलाफ उस्ताद शागिर्दन जो एहतजाज। अगवानन जो चवण है तो बासर वकील स्कूल के पेंजी मिल्कियत जानाए रात के वक्त भित दरवाजो लगाए छो है। स्कूल से कब्जे सबब न्याणियों की तालीम मुतासर थी रही है कब्जो खत्म कराया वे। सिंधड़ी वेझो नींगरी आमना शहर मिठड़ाओ केनाल में बुडी वही गोला जारी है। वारसन पारा मिठड़ाओ केनाल में पानी घटाने जो मुतालबो किया है। वारसन जो चवण है 13 साल की आमना शहर मिर्गी की मरीज है। दौरो पवण केनाल में पानी घटाया वे।

उॿावड़ो वेझो। अदालत मां फरार थियल ॿिनि बदनाम धाड़ेलनि वारे वाके जो केस दाख़िल। SHO जी फरियाद ते वाके जो केस ॿारहं अहलकारनि मथां उॿावड़ो थाणे ते दाख़िल कयो वियो। गफ़लत ऐं लापरवाही करण जा कलम बि शामिल। गुज़िरियल ॾींहं बदनाम धाड़ेल राहिब ऐं मोरियो शहर उॿावड़ो जी अदालत मां फरार थी विया हुआ। मीरपुर माथेलो में जमालुद्दीन मलिक जे कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ SSP आफ़ीस अॻियां धरणो। घोड़ सजावल मलिक में ॾेढ महीनो अॻु क़तल थियल पोरेत जे वारसनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो आयो। वारसनि जो चवण आहे त निहाल मलिक सिकंदर ज़मीर ऐं ॿियनि पुराणी दुश्मनी तां जमालुद्दीन खे क़तल कयो हो। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।

0: आए असम तमाम वो दिन चौदह अगस्त के समझते ईद बराबर समझा
1: पाजी कंट्री का बे कंट्री में शिफ्ट थो ना तो अवे एहसास मुल्क आजाद आए असंगे

0: आज़ादी जे ॾियारो वॾे दिलि जयान उत्सव मल्हाए रहिया आहियूं। असां आज़ाद आहियूं, ख़ुदमुख़्तियार मुल्क क़ौम आहियूं।
1: समूरे मुल्क में आज़ादी जो जश्न मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। सूबे जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार, ख़ासि स्टॉल बि लॻाया विया। शाम जी अदालत अॻूण सदर बशारुद्दीन असद खे घरू वेड़ कराइण समेत मुख़्तलिफ़ इल्ज़ामनि हेठि मौत जी सज़ा ॿुधाए छॾी। अदालत बशारुल असद जे सौट ऐं शामी फ़ौज जे अॻूणे ब्रिगेडियर जनरल आतिफ़ नज़ीब खे बि मौत जी सज़ा ॿुधाई वई। बशार हुकूमत ख़तम थियण बाद रूस में पनाह वरिती आहे। ऐं कोलंबिया में ज़िलज़िले सबबि फोतियुनि जो अंग वधीक 132 थी वियो। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तयारियुनि मूजिबि मलबे हेठां वधीक माण्हुनि जे दॿियल हुअण जो ख़दशो आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320180003।
6: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज ऑइंटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وے تو رابطے لئے 0301-196-8151
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: कराची जे नौजवान वापारी मीर रज़ा जी रत में बेहोशी जी दवा शामिल हुई ऐं जेल में गोली लगल हुई। केस जी जांच कंदड़ ज़रियन चयो आहे त मीर रज़ा जी शर्ट जे केमिकल रिपोर्ट पुलिस खे मिली वई आहे। मीर रज़ा जे वारिद मीर हुसैन पंहिंजे पुट जी मौत जी जांच ते इत्मिनान जो इज़हार कंदे चयो आहे त 13 ॾींहनि खां पोइ पहिरियों भेरो महसूस थी रहियो आहे त जांच सही रुख में अॻिते वधी रही आहे। मीर रज़ा जे केस में नई जोड़ियल जांच टीम जे मेंबरनि पारां मीर रज़ा जे वालिदैन ऐं वकील जिब्रान नासिर वाके वारे हंधि जो दौरो कयो। मीर रज़ा जे वालिद मीर हुसैन चयो त जेकॾहिं शुरूआत में ई असराइती नमूने जांच कई वञे हा त अॼु केस मुख़्तलिफ़ मरहले ते हुजे हा।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04372 0242-46-0100

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 196 851

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ऐं सरखेज़ी असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मां।
3: वापारी मीर रज़ा केस में अहम अख़बार आई है। सदस्य डीए ने वालदेन से मैच थी वो जांच टीम भी लाश मिलने वाले हंध में गेस्ट हाउस पहुंची शायदियों गड कयूं। जांच टीम में बिन मेंबर्स डीएसपी सिराजुद्दीन और इंस्पेक्टर मोहम्मद अली जो इजाफो जरिन मुजिब मीर रज़ा की रत में बेहोशी की दवा शामिल हुई और जेल में गोली लगल हुई। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन जो चवण है तो 13 डीन का पोए पेरों भेरों महसूस थी रो है तो जांच सही रुख में अगते वधी रही है।

जीएसयू रावलपिंडी में दाखिल करने की कोशिश करने पीटीआई जो हथियार बंद है दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग में मारजी वो फायरिंग की देवट में एक जवान भी जख्मी सुन समा वाले फाकी वजीर अल्लाह तआला चयो है पीटीआई सदाई तशद्दुद जी सियासत कई है कदें परमानेंट इजाज़त ना है क्यों माल रोड से पीटीआई कारकुन ने दी है जिते फायरिंग कई वाकई।

घणियूं शयूं साम्हूं आयूं आहिनि। पीटीआई जे कारकुननि वटां पार्टीअ जो झंडो ऐं ॿियो मवाद बि मिलियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुक़रर थियल टिन एडिशनल जजिस उहिदे जो हल्फ खणी वरितो। जस्टिस अयाज शोकत, जस्टिस उमेर मजीद मलिक ऐं जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद हल्फ खयो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर टिनी जजिस खे हल्फ खणायो। सदर अस्पताल ज़रदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत ॿई हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजिस जी मुक़ररी ऐं कुझ जे मुदे में वाद जी मंज़ूरी ॾिनी वई। सदर सनत ऐं पैदावार बाबति हारून अख़्तर खे वज़ीर-ए-आज़म जो सलाहकार मुक़रर करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। वज़ीर-ए-आज़म जी सदारत में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबति इजलास। कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस जे थर्ड पार्टी ऑडिट करण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में बेज़ाबतीअ जी का बि गुंजाइश न आहे। बेज़ाबतीअ में मुलविस अमलदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार सां बहरीन जे परेही वज़ीर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद जो फोन ते राब्तो। बहरीनी परेही वज़ीर पारां जल्द पाकिस्तान जो दौरो करण जी ख़्वाहिश आहे। पाक सऊदी ऐं तुर्कीअ जे दिफ़ाई माहिदे ते वाधायूं बि ॾिनियूं। बहरीनी परेही वज़ीर पारां हिते में अमन वारनि पाकिस्तानी कोशिशनि जी बि हिमायत कई वई। यमन जे हौसी बागियुनि जो बाबुल मंडब में कारकू जहाज ते हमिलो। हमले जा टे मेंबर फासी विया। मेरी टाइम सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि पानामा जे झंडो लॻल गहरी जहाज खे मिसाइल ज़रिए अमान वेझो निशानो बणायो वियो आहे। हमले जे नतीजे में जहाज जो डेक मुतासिर थियो ऐं टे मेंबर मारिजी विया आहिनि। दुनिया खे ॾेखारे छॾियो आहे त ईरान मज़बूत ऐं शिकस्त जो गुन आहे। कंहिंखे बि यकीन न हो त ईरान अमरीका खे शिकस्त ॾींदो, पर तेहरान करे ॾेखारियो आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त ईरान पाण खे शिकस्त न थियण जोगी ताक़त साबित करे ॾेखारियो आहे ऐं हाणे अमरीका ॻाल्हियुनि लाइ मिंथू करे रहियो आहे। आज़ाद कश्मीर में थियल चूंडनि जा टे मरहला मुकमल। नून लीग 38 सीटनि मां 24 ते कामयाबी माणे हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में अची वई। पीपल्स पार्टी जो 12 सीटनि सां बियो नंबर। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज राठौर पंहिंजी सीट खटण में कामयाब। अवाम दोस्त बाज़ू पार्टी हिकु सीट हासिल करे सघी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, IPP, जमायत इस्लामी समेत ॿियूं पार्टियूं नाकाम। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो सरदार अतीक बि हाराए वियो। अॻोणो वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियासाना खे बि ॿिनि तकनि तां हाराए वियो। मौजूदा सिस्टम नाकार ऐं हुकूमतूं नाकाम थी चुकियूं आहिनि ऐं इन खां मथां को बि कदम न कयो वञे। नवां यूनिट जा सूबा बि अवामी राय सां थियण घुरिजनि। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त अवाम जे खीसनि ते टैक्स जी सूरत में धाड़ो न हयो वञे। सिंध हुकूमत कराची खे खंडर बणाए छॾियो आहे। सूबे में करप्शन राज क़ाइमु आहे। पीपल्स पार्टी जी तर्जुमान सादिया जावेद चयो आहे त हाफिज़ नईम सस्ती शहरत लाइ लाशनि ते सियासत न करे, सिंध हिकु आहे ऐं सदाई रहंदी। अमन सूबनि जे शोशे बदिरां मकानी हुकूमत खे मज़बूत करे मसइलो हल कयो वञे। कराची जी वलीका अस्पताल में दाख़िल बाड़ा HIV में मुबतला थियण बाबति केस जी सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी। बाड़नि जा वालदेन ऐं सुल्तान जूनियर पेश। वालदेन जूं अदालती कमरे में नाहूं। जजिस अदालती कमरे मां उथी चेंबर में हलिया विया। दरख़्वास्त गुज़ारनि जे वकील चयो त दरख़्वास्त जे इल्तवा में वञण दौरान नव बाड़ा फोत थी विया आहिनि। अदालत खां हक़ीक़तूं ऐं इंक्वायरी रिपोर्ट लिकाई पई वञे। सिंध में 1200 बाड़नि में HIV जी तस्दीक थी चुकी आहे। बाड़नि जे वालदेन चयो त हिकु बेड ते चार पंज बाड़ा दाख़िल हुआ। हिकु सिरिंज बार बार इस्तेमालु कई पई वई। असीं व्याज ते पैसा खणी बाड़नि जो इलाज करे रहिया आहियूं। हाणे त घर जूं फटूं बि विकिणी छॾियूं आहिनि। किथां बि रुपए जी इमदाद नथी मिले। सुल्तान जूनियर चयो त 1200 बाड़ा HIV जा मुतासिर आहिनि ऐं इन्हनि जे ख़ानदाननि सां यकजहतीअ जे इज़हार लाइ अदालत आयो आहियां। कराची में म्यूज़िक टीचर्स जे उमीदवारनि जो जॉइन गार्डन मिलण ख़िलाफ़ प्रेस क्लब साम्हूं गायब वजाए एहतजाज। उमीदवारनि जो चवण आहे त हिकु पासे तालीम वारो वज़ीर चए थो त अदालत पारां रिकॉर्ड सबबि असांजी जॉइनिंग न ॾिनी।
بے پاسے عدالت میں تعلیم خاتے اسان کے خلاف وکیل موکل 2024 بھرتی کے رد کر وے دادو کے علاقے پیرس اسٹیشن بھرسا ہتھیار بندن اتھان نوجوان قتل ہتھیار بندن زاہد حسین پٹو میر نواز چاڈو کے گولی ہنی قتل کیا واقعے بعد جوابدار فرار اطلاع پولیس پہنچی راش اسپتال منتقل کیا پولیس چھو ہے قتل کی جانچ کرے رہا ہوں

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94
7: خوش جیو آہی تے جہان واہی صحت واہی تے سب کچھ آہی پروگرام صحت جی گال میں اساں جو اسٹوڈیو میں موجود ہوتا ہیں سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کہ مختلف بیماریوں بابت جان دیندا آہن ڈاکٹر صاحب کراچی اسلام آباد ان نواب شاہ جا مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں جرمن ہومیوپیتھی کلینک سامو ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ گورڈی کبی روڈ مہراپور میں اج کل مریضن جو علاج کرنا ہن جرمن جے کی جرمنی ملک ہے جرمنی جی فرنچائز ہے ڈاکٹر صاحب جی جے کی کراچی میں بھی ہے حیدرآباد میں بھی ہے اساں جے مہراپور شہر میں ڈاکٹر صاحب جے تاون سائیں تے کھولی ہوئی جو ڈاکٹر صاحب اصل ہتاں جے عوام تے اگڑی اسپیشلی مہربانی کی اویئرنیس میسجز مختلف بیماریوں بابت جان پہچان کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب FM ریڈیو تے اچھی کرے یا ہتے 2021 میں اچھی کرے جکا کلینک کھول رہے ان جو آغاز کیا چھو جو ڈاکٹر صاحب جو چوڑا ہے کا بھی بیماری لا علاج نہ یقیناً یہ ہی ہے کا بھی بیماری لا علاج نہ ہے کدیں بھی اواں کے مایوس نہ تھیڑو شفا دین والی ذات اللہ تعالیٰ جی ہے کافی اڑا مریض جے کے مختلف وجن وجن اسپتالن میں وجن وجن ہاسپٹلس میں لا علاج تھی کرے آیا ڈاکٹر صاحب وٹ آیا اللہ تعالیٰ جی حکم سے الحمدللہ وہ شفا یاب تھیا اج وہ تمام گھنو خوش ہیں اج بھی ڈاکٹر صاحب کے دعاؤں ڈیندا رہندا ہیں ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن ہیں 30 سالن کا ودھیک ڈاکٹر صاحب جو تجربہ ہے اواں کے اگر گردے کی پتھری آ پتے کی پتھری آ مسالے کی پتھری آ پائلس ہیں گلے جا گدود ہیں نک کی ہڈی وجل ہے اواں کے آپریشن کرائن کی ضرورت نہ ہے ان جو بغیر آپریشن کے کامیاب علاج کیا وجے تو کیڑو بھی پرانو اواں کے جوڑن جو سور ہے گوڈن جو سور ہے نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر ہے بلڈ پریشر ہے دل جا مرض ہے فالج کھنگ ٹی بی مادے جو سور مادے جی السر تری جو ودھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودھن یا جن عورتن جو وزن نتھو ودھے یا جن جو وزن ودھی وجے تو عورتوں مردوں کے پوشیدہ بیماریوں جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کرتا ہے تو اسانے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-91-8151 کال کر سکو تھا کئی بھی وقت ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکو تھا ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر تے صبح جو 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن دوستن کی اسی چوندا ہے تو زیادہ کھان زیادہ پروگرام میں کالز کرے ڈاکٹر صاحب کا کہیں بھی بیماری بابت मालूमात वठी सको था पुछी सको था डॉक्टर साहब वहां के मालूमात दींदो तो सब खां पहिरां असां डॉक्टर साहब के खुश आमदी चवंदा डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम अस्सलाम
7: डॉक्टर साहब ठीक आयो तबे ठीक आहे
5: जी अल्लाह ताला जा करुण एहसान
7: तमाम घणे महरबानी डॉक्टर साहब कहिड़े मौजू बाबति असांजे मौजूद ॿुधंदड़नि खे ॼाण ॾींदा ऐं पंहिंजा ॾींहं जेके तव्हां हिते वेहंदा आहियो उहे बि ज़रूरु असांखे ॿुधाईंदा जीअं असांजा मौजूद ॿुधंदड़ जेको आहे सो माना आसानी सां सम्झी
5: सघनि पहिरियां त सभु तारीफ़ूं उन पाकचूं जेको असांखे जीआरे थो खाराए थो रोज़ी ॾिए थो ख़ुशी ॾिए थो ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो असांजे प्रोग्राम सची ॻाल्हि बर वक़्तनि टाइम ते रोज़ाना नशर थींदो आहे ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त हर उहा ॼाण जेके असांजा घर वेठे मौज़ीन लिसनर्स आहिनि या दोस्त आहिनि या पेशंट हज़रात आहिनि ॿुधंदा आहिनि त उन्हनि ताईं पहुचाए सघूं जीअं लास्ट टाइम जेको आहे सो जेको आहे सो हिकिड़े ग़िज़ा जे हवाले सां प्रोग्राम कयोसीं उन्हनि खे तमामु घणो सभिनी साराहियो ऐं मैसेजिस में बि इहो ई जेको आहे सो रिक्वेस्ट कई त आईंदा बि असांखे कुझु अहिड़े ई जेको आहे सो ग़िज़ाउनि जे बारे में जेकी ॼाण जेकी असां बीमारियुनि जे हवाले सां जेके जेके टोटका हूंदा आहिनि उन्हनि जे हवाले सां या जेको देसी ॾसनि जे हवाले सां उहे बि इहे प्रोग्राम असांजो मशहूरु हूंदो आहे त अहिड़े तरीक़े सां असांजी क्लिनिक इन हवाले सां जेकी हर मर्ज़ जे हवाले सां जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मशहूरु आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ अमराज़ अव्हांखे ख़बर आहे त नक कन गले जो गदूद वधी वेंदो आहे या जेको आहे सो किडनी स्टोन हूंदो आहे या पिते जी पथरी या जेको आहे सो मैदे जी तेज़ाबियत या मैदे जूं जेके बि बीमारियूं हूंदियूं आहिनि या जोड़नि जो सूरु या कुनरग जी जेको आहे सो सूरु हूंदो आहे कुनरग जी जेकी तकलीफ़ हूंदी आहे उन हवाले सां या गर्दन जा जेके मोहरा जेको आहे सो यानी कमु न कंदा आहिनि या जेको आहे सो कमर दर्द हूंदो आहे या ज़नाना मर्दाना मसाला हूंदा आहिनि यूटीआई इन्फेक्शन हूंदो आहे बवासीर जो मसइलो हूंदो आहे त इन हवाले सां असां वटि होम्योपैथिक जी ट्रीटमेंट कई वेंदी आहे जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहरापुर शहर में साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोचड़ी रोड ते सुबुह जो टाइमिंग 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहियूं ऐं अहिड़े तरीक़े सां हफ़्ते जा 6 ॾींहं जुमो छंछर आचर सूमर अरबा खमीस मौजूदु हूंदा आहिनि अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजो चेकअप फीस फ्री रखियलु हूंदो आहे जेको जुमे जो ॾींहुं छंछर जो ॾींहुं ऐं आचर जो ॾींहुं हूंदो आहे बाक़ी दवाऊं अव्हांखे वठणियूं हूंदियूं आहिनि अहिड़े तरीक़े सां मौज़ूआतुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त सो कहिड़े बि मर्ज़ में जेको आहे सो हिकु त इलाजु कराइणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे हीअ जेके अव्हांखे असां 10-15 ॾींदा आहियूं इहे बिल्कुलु जेको आहे तमामु बहितरीन आहिनि एज़ अ फस्ट एड तौर ते या जेको आहे सो फ़िलहालु जेको वक़्ती तौर ते अव्हांखे बिल्कुलु हेल्प कंदा आहिनि ऐं हूअं बि इहे क़ुदिरती शयूं जेको आहे सो असांखे खाइणु घुरिजनि छो जो क़ुदिरती शयुनि सां जेको उन्हनि में को बि केमिकल वग़ैरह इन्हनि खे माण्हू न ठाहींदा आहिनि इन्हनि खे अलाह ताला तख़लीक़ कयो आहे ऐं जेके ॿी क़िस्म जूं अहिड़ियूं केमिकल्स वारियूं दवाऊं हूंदियूं उन्हनि में केमिकल्स हूंदो आहे इन जे करे कोशिशि कंदा कयो त क़ुदिरती शयूं जेके ऐं हिन मौसम में जेकी हर मौसम में अलॻि अलॻि फ्रूट ईंदो आहे ऐं हर जेको आहे सो फ्रूट जो हर भाॼीअ जो अलॻि अलॻि जेको आहे सो फ़ाइदो हूंदा आहिनि अहिड़े तरीक़े सां जीअं अॼुकल्ह गर्मी आहे ऐं गर्मी में जीअं मां लास्ट टाइम तव्हांखे खोड़ सारी शयुनि जे बारे में ॿुधायो फार्मनि वग़ैरह जे बारे में अहिड़े तरीक़े सां हींअर बि अव्हां वटि ॾिसो खीरो वंगो जेको आहे सो तमामु घणो जेको आहे सो वाफर मिक़दार में मौजूदु आहे खीरो वंगो तमामु हिकिड़ो बहितरीनु छो जो इन इहो सिर्फ़ु हिकिड़ी जेको आहे सो जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त जेके बि तव्हां ॾिसंदव त जेके ब्यूटिशनस हूंदा आहिनि या जेके ब्यूटी पार्लर्स में जेके फेशियल वग़ैरह हूंदा आहिनि जेके असांजी अदड़ियूं वग़ैरह इहे ॿुधनि थियूं ॾिसनि थियूं त उन्हनि खे ज़रूरु ख़बर हूंदियूं त उन्हनि शयुनि में कुकम्बर जंहिंखे असां खीरो चवंदा आहियूं कुकम्बर जेको आहे सो फ्लेवर मौजूदु हूंदो आहे उहो चमड़ीअ जे लाइ जेको आहे सो तमामु मुफ़ीद हूंदो आहे जेके बि अखियुनि जे हेठां हल्का थी वेंदा आहिनि या चहिरे ते छायूं थी वेंदियूं आहिनि दाग थी वेंदा आहिनि इवन मोहिड़ा थी वेंदा आहिनि या चमड़ी में पट थी वेंदी आहे खुश्की थी वेंदी आहे त उन जे लाइ जेको आहे सो खीरो वंगो तमामु मुफ़ीद हूंदो आहे सिर्फ़ु चमड़ी जी बीमारियुनि जे लाइ न बल्कि हुन में 90% जेको आहे सो पाणी पियल हूंदो आहे 90% पाणी पियल हूंदो आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ ॿिया अज़ा शामिलु हूंदा आहिनि ऐं क़ुदिरती तौर ते विटामिन्स जेके हुन में मैग्नेशियम कैल्शियम प्रोटीन पोटेशियम वग़ैरह जेके अव्हांजे जिस्म में जेकी खोट हूंदी आहे पाणीअ जी उहा पूरी कंदी आहे हॾनि जी कमज़ोरी हूंदी आहे उहा जेको आहे सो ख़तमु थींदी आहे कोलेस्ट्रोल खे फ़ाइदो ॾींदी आहे ब्लड प्रेशर जंहिंजो वधियलु रहे थो उहे जेकॾहिं खाइनि था उनखे ऐं वाधि में वधि हुई बि थधो त पंहिंजी जॻहि ते आहे, लेकिन हिन में जेके अज़ा आहिनि ऐं हिन में जेकी कुदरती सलाहियत रखियल आहे, उहा जेकी असांखे अल्सर न छॾींदी आहे, मैदे जी तेज़ाबियत थी वेंदी आहे, नंढे आर्डर में जेकी सोज़िश थी वेंदी आहे, तकलीफ़ थी वेंदी आहे, उन हवाले सां ई तमामु अक्सीर आहे। जिन जे वात में खुश्की रहंदी हुजे या जिस्म में जेको आहे सो यानी खुश्की रहंदी हुजे, वात मां जिन जे मां स्मेल ईंदी हुजे या जिस्म मां स्मेल ईंदी हुजे इवन, उन में बि जेकॾहिं खीरे वंगे जो इस्तेमालु ज़्यादा हूंदो त उहाखे इहा तकलीफ़ कोन थींदी। रोज़ाना घटि में घटि ॿ खीरा वंगा जेको आहे सो इस्तेमालु करणु घुरिजनि, ऐं घणा जी खल लाहे जेको आहे सो इस्तेमालु कंदा आहिनि, लेकिन खल सां जेको आहे सो हिनखे खाइजे, त जेके खल में बि जेके हिन जे में अज़ा हूंदा आहिनि उन्हनि में मुफ़ीद अज़ा हूंदा आहिनि, ऐं उन मां वधीक फ़ाइदो पहुचंदो आहे। जे सो जेके बि बीमारियूं आहिनि, हीअ प्रोग्राम बीमारियुनि जे हवाले सां ई हूंदो आहे, इन ई हवाले सां मूंखे ॿुधाईंदो, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो इलाजु होम्योपैथिक दवाउनि रस्ते कयो वेंदो आहे, ऐं कुदरती तौर ते जेके हीअ फल फ्रूट सब्ज़ियूं ख़ुदा ताला पैदा कयूं आहिनि असांजे लाइ, त उन में बि अलाह ताला इहा ई हिकमत रखी आहे। इन जे करे एज़ अ फस्ट एड तौर ते तव्हां इहे शयूं इस्तेमालु करे सघो था, त उन सां जेको आहे सो यानी चमड़ी जी बीमारी, चमड़ी जी खुश्की, मैदे जी खुश्की, तेज़ाबियत वग़ैरह, या इवन गर्मी में जेको आहे सो कंहिंखे लू लॻी वेंदी आहे, या गर्मी जो मथे में इंतिहाई शदीद सूरु पवंदो आहे, त उन में बि जेको आहे सो खीरो वांगुरु इस्तेमालु करण सां काफ़ी फ़ाइदो पवंदो आहे। ऐं पथरीअ जे लाइ बि जेको आहे सो हूअं बि तव्हांखे ख़बर आहे, जेके असांजा गुर्दा हूंदा आहिनि उहे असांजे जिस्म जो एज़ अ फिल्टर यानी धोबी तौरु कमु कंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां खीरो वांगुरु वरी गुर्दनि खे जेको आहे सो सफ़ाई तौर ते धोबी तौरु कमु कंदो आहे, यानी जेकॾहिं अव्हां खीरो वांगुरु खाओ था ऐं अव्हांखे जेकॾहिं पथरी आहे, किचरो आहे या इन्फेक्शन आहे, त उनखे हू जेको आहे सो काफ़ी सारो फ़ाइदो ॾींदो आहे। यानी दवा पंहिंजी जॻह ते रही, पर जेकी असां देसी ॾिसण में ॾींदा आहियूं, त खीरो वंगो बि उन्हनि मां जेको आहे सो हिकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां हॾनि जी कमज़ोरी या हॾनि में सूरु हूंदो आहे, त एक्सटर्नली यूज़ तौर ते तव्हां सिर्फ़ु जेकॾहिं खीरे वंगे खे जेकॾहिं गोॾे में सूरु आहे उन ते जेकॾहिं मलींदो, त उन में बि फस्ट एड तौर ते अव्हांखे जेको आहे सो काफ़ी फ़ाइदो मिलंदो आहे। वात में जीअं मां ॻाल्हि कई बदबू आहे या छाला थी वञनि था, त उन में बि काफ़ी फ़र्क़ु ॾींदो आहे। एतिरे क़दुर जो जंहिंजी जेकॾहिं का चमड़ी सड़ी पए थी ऐं उते खीरो वांगुरु जी मसाज कबी आहे, त उन में बि काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदो पइजे। इहे हिकिड़ी कुदरती शयूं हूंदियूं आहिनि, इन्हनि जेके फ़वाइद हूंदा आहिनि, इन्हनि जा तिबी फ़वाइद हूंदा आहिनि, कंहिंखे घटि मालूम हूंदा आहिनि, ऐं असांजे प्रोग्राम जो मक़सदु इहो ई आहे त ॿिए ताईं असां अवेयरनेस पहुचायूं, त इहे शयूं अवां ताईं पहुचाइण असांजो जेको आहे सो एम हूंदो आहे। इन जे करे अवां ताईं इहे शइ पहुचासीं, त कहिड़े बि क़िस्म जी मैदे जी तकलीफ़ आहे, कब्ज़ आहे, या जेका गर्मी जो असरु आहे, त उन में जेको आहे सो खीरो वांगुरु तमामु मुफ़ीद आहे। वॾी महिरबानी साईं।
7: ऐं दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, अॼु तमामु घणी ऐं तमामु बहितरीन डॉक्टर साहबु ॼाण ॾिनी त खीरे जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, छो जो जेकी असांजी रोज़मर्रा जी खुराक आहे, फ्रूट आहिनि, फल आहिनि, उन्हनि जो असांजी सिहत ते तमामु गहिरो असरु हूंदो आहे। तंहिंजे करे असांखे उन्हनि मां बि फ़ाइदो हासिलु करणु घुरिजे। जीअं हिन वक़्तु तमामु घणी गर्मी आहे, 50-51 सेंटीग्रेड जेको आहे सो गर्मी हली थी वञे पई, इन खां पंहिंजो पाण कीअं बचाइजे। गर्मी जी लुक बि आहे, ॿाहिरि निकिरूं था झोलो आहे, कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे माण्हू हलंदे गर्मी में किरी पवंदा आहिनि, बेहोश थी वेंदा आहिनि, रोड ते किरी पवंदा, झंग में किरी पवंदा, किथे भिट ते किरी पवंदा आहिनि। दोस्तनि जूं कालूं बि वठंदासीं, शामिलु कंदा हलंदासीं। हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसूं किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे। असांजो नंबर तव्हांखे ॿुधाईंदा हलंदासीं, बज़रिया लाइव कॉल तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था, 0301-2196-851। त असीं उहो ज़िक्र करे रहिया हुआसीं त फ्रूट ऐं फल जेको आहे सो असांजे सिहत जे लाइ तमामु घणा कारा था आहिनि, फ़ाइदेमंद आहिनि। तव्हां कंहिं बि बीमारी में बि डॉक्टर साहिब खां पुछी सघो था, 0301-2196-851। जीअं गर्मी जी तमामु घणी मौसम आहे, उन में फारवा जेकॾहिं अव्हां इस्तेमालु करियो था तॾहिं बि गर्मी जे लाइ फ़ाइदेमंद आहिनि, ऐं अव्हां खीरो इस्तेमालु करियो था जंहिंखे असीं वंगो चवंदा आहियूं सिंधी में, उहो बि जेको आहे तमामु फ़ाइदेमंद आहे। कॉल जी तरफ़ ईंदासीं, कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। दुआ अलहमदिल्ला, केरु साहिबु ॻाल्हाए साईं? ख़ुश आमदी चऊं था हाफ़िज़ सियाल साहिब खे। छा पुछंदा साईं डॉक्टर साहिब खां?
8: डॉक्टर साहब, इहो पुछंदासीं त मुंहिंजी नंढी अच्छा
7: इनके टाइम लगंदो त मेरापुर शहर जायो डॉक्टर साहब मेरापुर शहर में अचे तो अल्लाह ताला जे हुकुम सा अग में भी अड़ा मरीज आया है जिनके मिसाल तीन छह महीने की पर पंद्रह दिन के झटको लगो उ भी न बी सकन नेठ उ हली हली डॉक्टर साहब अड़ी वीडियोज भी पी हों व्यूज पाया हूँ जी अस दिखाई भाई ऐसो ये मरीज आयो अल्लाह ताला जो हुकुम से एफ एम से भी हल्दा वो पा चुना साई असानी नंढड़ी या नंढड़ो हाँ घुमे फिरे तो सही थी वो तो तुम रूबरू दिखारे वो तो बेहतर थी साई इनशाला इन इलाज मौजूद लागू इलाज कराइ तो नंढड़ी घुमंदी ठीक है साई जी साईं डॉक्टर साहब
5: जी साईं बिल्कुल शिफा देने की जात रब ताला जी है बाकी इलाज कराण सुनत है इन नंढड़ो बार हों नंढे बार के लिए असं पे भी सभी के खबर है तो बुधाई रूबरू उन दिखारे वे तो केतरी कंडीशन में जो सो नंढड़ो मुतासिर है उनके ऐसी पोई जो सो अंदाजो लगे सकजे तो उनकी दवा थी न थी केतरी थी पे गाल के शिफा रब ताला हथ में है इनके नंढे के रूबरू दिखारे वे
7: प्रोग्राम है सेहत की गाल चीज मेरा प्रोफेम 94 जो ही आवाज़ अवान समात में पहुंचे पो प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब असान स्टूडियो में मौजूद जी हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर सूमर से सुबह जो दहें का शाम पंजे वगे ताई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा 0301-9196-151 असो लाइव कॉल जो नंबर है अवा कें भी वक्त डॉक्टर साहब का पुछी सको था कें भी बीमारी बाबत कदें भी अवे मायूस ना थियण शिफा दियण वाली जात अल्लाह ताला जी आई डॉक्टर सिर्फ़ इलाज कंदो आहे अल्लाह ताला जे हुकुम सां अल्लाह ताला जे फज़ल सां काफ़ी अहिड़ा मरीज़ जेके सिहतयाब थी विया आहिनि ठीक थी विया आहिनि डॉक्टर साहब जे दवाउनि सां ऐं डॉक्टर साहब इलाज कंदो आहे अल्लाह ताला उन्हनि खे शिफ़ा ॾींदो आहे 0301-9196-151 गर्मी जो तमामु घणो ज़ोर आहे शिदत आहे तंहिंजे करे अव्हांखे गर्मी खां पंहिंजो पाण बचाइणो आहे छो जो लाइट बि अक्सर करे ग़ाइबु रहे थी असांजे प्यारे पाकिस्तान जो निज़ाम अहिड़ो ई आहे जो लोड शेडिंग तमामु घणी आहे ऐं त तंहिंजे करे पंहिंजो पाण बचा करियो इन जो बहितरु हल इहो आहे त ख़ासि तौर ते मंझंदि जे टाइम 11 खां वठी अव्हां 3 वॻे ताईं 4 वॻे ताईं बिल्कुलु घर खां ॿाहिरि निकिरण खां पासो करियो पखो वग़ैरह उनजो जेको आहे सो हवा जो थोरो पासो वठो थधि जो छांव जो पासो वठो उस खां पंहिंजो पाण बचा करियो ज़ाहिर आहे ई कारोबार आहे दुनिया जो दस्तूर आहे अव्हांखे उथणो आहे वेहणो आहे शहर बि अचिणो आहे वञिणो आहे ॻोठ में बि उथणो आहे वेहणो आहे अचणु वञणु सॼो निज़ाम जेको आहे सो हीअ हलाइणो आहे पर एहतियात ज़रूरी आहे तंहिंजे करे पंहिंजो ख़्यालु रखो पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहब 30 साल तजुर्बो रखंदड़ सीनियर डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि जेके सिहत बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया आहिनि जीअं अॻियां हफ़्ते डॉक्टर साहिबु हिकु दफ़ो मौजूद फारा जेके आहिनि उहा इस्तेमालु कयो उहे तमामु थधा आहिनि उन्हनि जो जूस ठाहे इस्तेमालु करियो खीरे जो जीअं डॉक्टर साहिबु अॼु ॿुधाए पियो त तव्हां खीरे यानी वंगे जो इस्तेमालु करियो उहो बि जेको आहे तमामु घणो थधो आहे उनजो असुलु छा आहे जेका इंसान जे यूज़ करे थो उनजो जेको तासीर हूंदो आहे उहो तासीर इंसान जे जिस्म खे त जीअं उनजी स्टेमिना हूंदी त उहा गर्मी जी शिदत खे मुंहुं ॾेई सघंदी इंसान में जॾहिं स्टेमिना मज़बूत हूंदी आहे त उनजी गर्मी जी शिदत खे इंसान मुंहुं ॾींदो आहे फेस कंदी आहे उनजी बॉडी 0301-9196-851-2196-8501 प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो ई आवाज़ अव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ बि वेंदासीं गॾु गॾु रहिजो ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर FM 94
9: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
10: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
9: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
8: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
9: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
1: सोना सिहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना

0: कमर्शियल ब्रेक बाद हिकु दफ़ो ॿीहर प्रोग्राम में भलीकार ऐं हिन वक़्तु सिलसिलो जारी रखंदासीं कालनि जो, छो जो ब्रेक खां बाद में कालूं वठण जो ई सिलसिलो जारी रहंदो आहे। कालर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। दुआऊं दुआऊं तव्हां ॿाहिरनि जूं दुआऊं तव्हां ॿुधायो। साईं ख़ुशि आहियो खेरा महीने खां वठी प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब वटि आया हुआ अॻु में डॉक्टर साहब वटि आया हुआ अॻु में कॾहिं कोन न न ऐं डॉक्टर मंज़ूर साहब जी ॻाल्हि पियो करियां, उन वटि आया आहियो कोन आया हो? पोइ त तूं परेशान थिए ई न यार, हर भरो वतींदो अठो महीनो थी वियो सूर जंग में खयूं, तुंहिंजी साईं असांजो रॻ इहा सीटी पई हूंदी चवंदे मूंखे जेको जंग त सफ़ा उहो लॻी पई आहे सुन ईअं ई लॻी पई अथई न बड़कंदी न साईं ब्लॉक हूंदी बड़कंदी, इन जो इलाज मौजूदु आहे डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब वटि। ऐं मालिश कंदो आहे छा मालिश कंदो आहे? बसि माराए छॾी पंहिंजो पाण खे डॉक्टर साहिब खां एफ एम तोखे ॿुधावे थो, इन जी मालिश न करईंसि मालिश न करईंसि, रहंदो सुजंदी मालिश करे उन टाइम तोखे सुकून ॾींदी हूंदी, पोइ ॾिसंदो हूंदे त ॿिनि कलाकनि खां पोइ टिनि खां पोइ वधीक सुजंदी हूंदी सोज कंदी हूंदी सोज करे थी पोइ मालिश खां पोइ सोज करे थी न करे थी त न कर न ॾिस तूं कंहिं सुठे डॉक्टर सां त राबितो कर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु रोज़ माण्हुनि खे मशवरो ॾियो। किथां थो ॻाल्हाईं? को मसलो ई न आहे, सुभाणे ई हलिया अचो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु मेरापुर में मौजूदु आहे। 30 साल तजुर्बो अथसि, 30 साल जर्मनी खां पढ़ियल आहे, जर्मनी खां जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक आहे, जर्मनी वारनि जी फ्रेंचाइज़ अथसि। शहर में ई आहे मेरापुर में। हा हिते रत बत वारो निज़ाम न आहे, प्रॉपर तरीक़े सां इलाज आहे। अलाह ताला जी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे। डॉक्टर वॾो डॉक्टर आहे, मशहूरु डॉक्टर आहे। ठीकु
1: आहे,
0: बाबा साम्हूं साम्हूं ईंदे त तॾहिं जेको आहे सो ॾिसी करे तुंहिंजो इलाज शुरू कंदो। ईअं न आहे त एतिरा एतिरा पंहिंजो पेंड आहे त उनजो मसलो साम्हूं ॾिसबो आहे। वधीक डॉक्टर साहिबु तोखे ॿुधाए थो, एफ एम ॿुध सॼो कुझु, डॉक्टर साहिबु सॼो तुंहिंजो आवाज़ु ॿुधे थो पियो। ठीकु आहे, अच्छा सही सही। डॉक्टर साहिब सां पाण सां ॻाल्हाईंसि, डॉक्टर साहिब तव्हांखे पाण ॿुधाए थो। डॉक्टर साहिब साईं जेको आहे सो मुख़ातिबु आहे, हिन महिल रेडियो में लाइव हले पियो तुंहिंजो आवाज़ इहो।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर साईं।
2: जी जी मूंखे इहा ॻाल्हि असां तव्हांजी ॿुधीसीं। हाणे तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो, तव्हांखे ॿुधायूं था त एक्चुअली जेकी हीअ तकलीफ़ हूंदी आहे या हींअर हिन वक़्तु हर ॿिए टे शख़्स खे इहा तकलीफ़ आहे ऐं खोड़ सारा पेशंट जहिड़ा तव्हां इन में मुबतला न आहियो, इन खां अॻे खोड़ सारा इन में तकलीफ़ में असां वटि ईंदा आहिनि, रोअंदा वेंदा आहिनि, ख़ुशि थींदा। सो वधीक शिफ़ा अलाह जे हथ में आहे। बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त रॻ जेकी हूंदी आहे उहा ब्लॉक थी वेंदी आहे, पोइ जीअं अवां ग़लती कई आहे कंहिं वटि ॿुध सुध वियो किथे रतु कढरायो, के घणा ब्लेड हणाईंदा आहिनि, के ॾंभ ॾियारींदा आहिनि, के छिकू ॾियारींदा आहिनि। हाणे बि हिकिड़ी दोस्त शाम बि मूंसां ॻाल्हायो त उन सां बि इहो ई जेको आहे सो मसइलो हुयो। सो उनखे बि असां इहो ई ॾस ॾिनोसीं त हर पेशंट जी कंडीशन अलॻि हूंदी आहे, उनजी ट्रीटमेंट जेको आहे इलाजु उनजो इलाजु थींदो आहे, मेडिकल में उनजो ऑपरेशन थींदो आहे, असां वटि हिन जी ट्रीटमेंट थींदी आहे। बाक़ी ॿुध सुध ते जेके तव्हां कमु कराया आहिनि उहे थींदा आहिनि, जेके उहे इंतिहाई ग़लति आहिनि। अॻिते हली माण्हू रग जेकी आहे उहा डेमेज थी वेंदी आहे, पोइ हलण खां बि रहिजी वेंदो आहे, उथण खां बि रहिजी वेंदो आहे। इन जे करे ही हिकिड़ा हसास मसाला हूंदा आहिनि, हिन खे तव्हां सीरियस वठो ऐं जेको आहे सो अहिड़नि माण्हुनि ते तव्हां न वञो जितां तव्हांखे नुक़सानु पहुचे। हिकिड़ो इलाजु करायो, इलाजु 2 महीना हले, 3 महीना हले, 6 महीना हले, ज़ाहिर आहे हर कंहिंजी कंडीशन हूंदी आहे, हर कंहिंजी मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो तकलीफ़ हूंदी आहे, कंहिंखे घणी वरितल हूंदी आहे, कंहिंखे थोरी हूंदी आहे। कंडीशन में थींदो उहाखे ख़बर आहे जेको आहे इहो ई थींदो आहे, करंट लॻंदा आहिनि, सड़ी टंग उहा सड़ंदी आहे, सुन थी वेंदी आहे, सूर थी वेंदी आहे, इहो सॼो रग जेको आहे सो ब्लॉक थियण जे करे आहे। सो इन जे करे मालिश बि इन जे लाइ सख़्तु मनो आहे, ऐं इन जे लाइ हींअर को बि ॾस पंधु अजायो आहे, छो जो हिन वक़्तु तव्हां कंडीशन बिगाड़े छॾी आहे, ॾंभ ॾियारे रत कढाए। सो इन जे लाइ इन जी ट्रीटमेंट थींदी असांजी क्लिनिक मेहरापुर शहर में कोटड़ी रोड ते, वधण पोटरा पेट्रोल पंप जे बिल्कुलु साम्हूं मौजूदु आहे। सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदासीं। हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, जुमो छंछरु आचरु। अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक असांजी बंदि हूंदी आहे। सो अव्हांखे इहो ई आहे, तव्हां रूबरू ॾेखारे वञो, वॾी महिरबानी।
0: महिरबानी साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई, महिरबानी। हा हा बिल्कुलु, 6 ॾींहं हूंदा आहियूं, अरबा खमीस जुमो छंछरु आचरु अंगारो ॾींहुं क्लिनिक बंदि आहे। ठीकु आहे मुंहिंजे साईं, प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी, मेहरापुर FM 94 लाइव पेश कयो पियो वञे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानी, मोहबतूं। कॉल जो सिलसिलो जारी ऐं सारी आहे। 0301-2196-851 सखी जाम ॾातार हिन वक़्तु कॉलर लाइन ते मौजूदु हो, जेको बीमारी बाबति पुछी रहियो हो डॉक्टर साहिब खां त हुन जी रग ब्लॉक आहे ऐं हुनखे ॾाढी तकलीफ़ आहे। जॾहिं रग ब्लॉक हूंदी आहे त यकीन सॼी जंघ में हिकिड़ो साड़ो रहंदो आहे, तकलीफ़ हूंदी,

0: कद्दू जी भाजी तमाम बेहतरीन है, ये जी कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर सको था। खीरो वंगो फारवा आलू बुखारा जरदालू ये वहाँ जला पपीतो तमाम बेहतरीन इन मौसम में ही अल्लाह ताला जो एकड़ो करश्मो है, अल्लाह ताला जा एकड़ा देन है, अल्लाह ताला जा तोहफा है अवां जे लाए मखसूस एकड़ो टाइम जे लाए ये शयूं अचन थियूं ए पोए जेको सो हली वजन थियूं। इन मां जेतरो थी सके त ओतरो तव्हां फ़ाइदो तमामु घणो वठो त जीअं अवां जे जिस्म में जेको आहे सो जेकी पाणीअ जी खोट डिहाइड्रेशन थी वञे थी या जेकी कमज़ोरी थी वञे थी माण्हू जिस्म न ढाल थी वञे थो उहो जेका सो उन खां बची सघो था ऐं इहो करण सां अव्हांखे काफ़ी सारो फ़ाइदो पइजी सघे।
1: तमामु बहितरीन डॉक्टर साहिबु ऐं अवां जेके फ्री ॾींहुं चेकअप कंदा आहियो उहे बि असां दोस्तनि खे ॿुधायो आहे आख़िर में कुझु कयो आहे।
0: अॼु साईं प्रोग्राम जे शुरूआत में विच में अवां बि जेको आहे सो पेशंट्स खे दोस्तनि खे लिसनर्स खे ॿुधाईंदा आहियो असां बि ॿुधाईंदा आहियूं वरी ॿीहर ज़रूरु जेको आहे सो इहो नोट कराईंदा हलूं छो जो घणा अंगारे जे ॾींहुं असां वटि फ़ोनूं कंदा आहिनि क्लिनिक ते ईंदा लेकिन अंगारे जो ॾींहुं असांजी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे इहो थोरो ज़हन में हुजे ऐं उनखां अलावा टे ॾींहं असां वटि चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे जेके हज़रात उन जेके ग़रीब हज़रात आहिनि उन्हनि मां फ़ाइदो वठी सघनि था। मिसल जुमे जो ॾींहुं छंछर जो ॾींहुं आचर जो ॾींहुं असांजी टे ॾींहं चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे दवाऊं अलबत्ता पेशंट वठंदो आहे। उन खां पोइ जेको टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहियूं ऐं क्लिनिक जो हंधु जेको आहे सो अवां सभिनी खे ख़बर आहे मशहूरु आहे हिन वक़्तु जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक अव्हांजे शहर मेहरापुर में कोटड़ी रोड ते साम्हूं वधण पोट आहे पेट्रोल पंप। अवां जीअं जेको आहे सो कोटड़ी खां ईंदो त कार्नर ते ई जेको आहे सो पंप आहे उनजे साम्हूं जेको आहे सो क्लिनिक आहे ऐं नंबर अव्हांखे पुकारियो वियो आहे ॿुधायो वियो आहे 0301-9196-2451 कलाक ई खुलियलु हूंदो आहे। सिर्फ़ु इहा महिरबानी कंदा कयो जेके दोस्त हज़रात जेको आहे सो ईअं वांद कई वारी फ़ोनूं कंदा आहिनि उन में जेके असांजो कमु वारो पेशंट हूंदो आहे जेको ज़रूरी जेके मसइलो हूंदो आहे उहो रहिजी वेंदो आहे छो जो ज़ाहिरी आहे त हर को माण्हू मसरूफ़ हूंदो आहे पंहिंजे कमनि कारनि में हूंदो आहे। फ़ोन सिर्फ़ु असां उन्हनि खे नंबर ॾिना आहिनि त जेके जिनखे तकलीफ़ आहे त जीअं असां उन्हनि खे आगाही ॾेई सघूं ऐं हू उन मां फ़ाइदो वठी सघूं
1: उन मां फ़ाइदो वठी सघूं। तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो इन हिते अॼोको प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान एडवोकेट हाकिम अली जिस्काणी खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान अलाह वाहि।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

पाकिस्तान के ठंड में हिंदुन सिखन ए मसीह बिरादरी अहम किरदार अदा किया। कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना जो 11 अगस्त वो खिताब आइन जो हिस्सो है अकलियतू मुल्क जो अहम हिस्सो है। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ इस्लामाबाद में अकलियतन के कौमी दीहें तकरीब का खिताब। वज़ीर आज़म अकलियतन जो किरदार पाकिस्तान की तारीख जो अहम हिस्सो बणजी चुको है। मुल्क की तरक्की में भी अकलियतन जो अहम किरदार है। तालीम के शोबे में पारसी मसीह बिरादरी जो खिदमतू शानदार हैं। असा सभी के गर्जी पाकिस्तान के तरक्की के दग से अगते वी वो है।

0: मौजूद आहिन। फौजी बाहरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जी FM 94।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 ऐं 0242460100
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

ईरान जे अहम दौरे ते तेहरान पहुतल घरू वजीर मोहसिन नकवी जी ईरानी परडेही वजीर अब्बास राखची सां मुलाकात खिते जी ताजी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल दिफ़ा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ़ चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान वाइदे जे वेझो पहुची चुका आहिनि। कुझु ॾींहनि खां थींदड़ अगभराई सुठियुनि ख़बरुनि तरफ़ वञी रही आहे। दुनिया खे ॾेखारे छॾियो त ईरान मज़बूत ऐं शिकस्त जोॻो न आहे। कंहिंखे बि यकीन न हो त ईरान अमरीका खे शिकस्त ॾींदो, पर तेहरान करे ॾेखारियो आहे। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़ी चयो आहे त ईरान पाण खे शिकस्त न थियण जोगी ताक़त साबित करे ॾेखारियो आहे ऐं हाणे अमरीका ॻाल्हियुनि लाइ मिंटू करे रहियो आहे। यमन जे हूसी बागियन जो बाबुल मंदब में कार्गो जहाज ते हमिलो, हिकु पाकिस्तानी समेत 2 ॼणा मारिजी विया। 3 पाकिस्तानियुनि समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी। मेरी टाइम सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब मानामा जे झंडे वारे जहाज खे मिज़ाइल ज़रिए ओमान वेझो निशानो बणायो वियो। हमले जे नतीजे में जहाज जो डेक मुतासिर थियो ऐं 2 ॼणा मारिजी विया। नायब वज़ीर-ए-आज़म सरकार सां बहरीन जे परडेही वज़ीर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद जो फोन ते राब्तो। बहरीनी परडेही वज़ीर पारां जल्द पाकिस्तान जो दौरो करण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर, पाक सऊदी ऐं तुर्कीअ जे दिफ़ाई माहिरे ते वाधायूं बि ॾिनियूं। बहरीनी परडेही वज़ीर पारां ख़िते में अमन वारियुनि पाकिस्तानी कोशिशुनि खे बि हिमायत कई वई। चेयरमैन नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर जनरल आमिर रज़ा खे निशान इम्तियाज मिल्ट्री ॾियण वारी तकरीब। ऐवानी सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी जनरल आमिर रज़ा खे निशान इम्तियाज मिल्ट्री सां नवाज़ियो। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं सर्विसिस चीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं ॿियनि शिरकत कई। पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेज जो कामयाब ऑपरेशन पंज खारजी दहशतगर्द मार थी विया। आईएसपीआर मुजिब गुझे इतलात ते कयल ऑपरेशन दौरान फितनतुल हिंदुस्तान जा 5 खारजी दहशतगर्द मार थी विया। सनन कब्ज़े मां वॾी तादाद में हथियार ऐं बारूदी मवाद बि हथ। कामयाब कार्रवाई खे सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां फोर्सेज खे भेटा पेश। पाकिस्तान खे ठाहिण में हिंदुनि, सिखनि ऐं मसीह बिरादरीअनि अहम किरदार अदा कयो। क़ाइद अज़म मोहम्मद अली जिना जो 11 अगस्त वारो ख़िताब आइन जो हिसो आहे ऐं अक़लियतूं मुल्क जो अहम हिसो आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो इस्लामाबाद में अक़लियतनि जे क़ौमी ॾींहं ते तक़रीब का ख़िताब। वज़ीर आज़म चयो त अक़लियतनि जो किरदार पाकिस्तान जी तारीख़ जो अहम हिसो बणिजी चुको आहे ऐं मुल्क जी तरक़ी में बि अक़लियतनि जो अहम किरदार आहे। असां सभिनी खे गॾिजी पाकिस्तान खे तरक़ी जे दग ते अॻिते वठी वञणो आहे। कराची जे नौजवान वापारी मीर रज़ा केस में अहम अगभराई, संदसि डीएनए वालदेन सां मैच थी वियो। जांच टीम बि लाश मिलण वारे हंधि ऐं गेस्ट हाउस पहुची शाहिदियूं गॾु कयूं। जांच टीम में ॿिनि मेंबर्स डीएसपी शाहजुद्दीन ऐं इंस्पेक्टर मोहम्मद अली जो इज़ाफ़ो। ज़रियनि मूजिब मीर रज़ा जे रत में बेहोशी जी दवा शामिल हुई ऐं जेल में गोली लॻल हुई। मीर रज़ा जे वालिद मीर हुसैन जो चवणु आहे त 13 ॾींहनि खां पोइ पहिरियों भेरो महसूस थी रहियो आहे त जांच सही रुख में अॻिते वधी रही आहे।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-180-0003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: इलेक्शन लड़े सिंध में, अगर लोग उनको सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल, और उनकी पार्टी उनको कहते देना चाहती है, वो उनका प्रॉब्लम है। इधर सिंध के लोगों का ये इशू है, पुलिस की बेहतर होने के बावजूद हम वहां तक पहुंच नहीं सके। एक दो बार हमें जो रेट मिली थी लेकिन वो रेगुलराइज नहीं हुई, लेकिन कोशिश जारी है। हमारी कोशिश यही होगी कि हर मिसिंग बच्चा जो है मिल जाए।
4: सिंध में नवन सूबन की गाल का नई ना है, सिंध असेंबली पहरिया भी नवन सूबन के रद्द कर चुकी है। जरूरत पे तो सिंध असेंबली में ठहराव भी पास कदासी, असा के रोकण वो ना है। सिंध की अवाम के पीपल्स पार्टी से मुकम्मल भरोसा है। वे वजीर मुराद अली शाह की कराची के आर्ट काउंसिल में गाल बोल, मुराद अली शाह मरियम नवाज से मुखातिब थे, जैसे मरियम नवाज के सिंध में सियासत जो शौक है तो सिंध अच्छी सियासत करे, वोटर लिस्ट में नालो शामिल कराए। इलेक्शन वेड़े मीर रजा के मामले में पुलिस जो कोताहियों पर आऊं इन बाबत कुछ न तो चवा। मुझे ख्वाहिश है केस की जांच सही तरीके से थे। प्रिया कुमारी बाबत वे वजी जैसे प्रिया के बारे में का जान हो तो अज ही केस बाजियाब कराए वूँ हाँ। कोशिश है प्रिया समेत गुम थियल समूरा बार बाजियाब थे। कराची के नौजवान व्यापारी मीर रजा केस में अहम अग भराई, संदस डीएनए वॉलिडेन से मैच थी, जांच टीम भी लाश मिलने वाले हंध गेस्ट हाउस पहुंची शायदियों गड गयी। जांच टीम में बिन मेंबर्स डीएसपी सिराजुद्दीन इंस्पेक्टर मोहम्मद अली जो इजाफो। जरिये मूजिब मीर रजा की रक्त में बेहोशी जा दवा शामिल हुई, जेल में गोली लगल हुई। मीर रजा के वालिद वीर हुसैन जो चवण है 13 डी पे भेरों महसूस रो है जांच सही रुख में अगते वी रही है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।